नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। ये विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा है। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चिंतन। किताबें अनगिनत हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य ये है कि जो जरूरी है उसे लें, उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

तक के अपने शोर से, पर न सिर्फ चक्र से ये जंग खेली जाएगी। जागो रे जागो रे जागो देश।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:30 हो रहे हैं। आइए आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इस झरोखा के बाद 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस का भाग 192। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन का भाग 7। कलाकार गायक अनूप जलोटा, प्रस्तुति मनीषा जैन की। और कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे सुबह 7 और 7:30 पर। सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सुबह 8 होंगे समाचार और 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, और यही कार्यक्रम दोपहर 2 पुनः सुना जा सकता है। सुबह 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम के अंतर्गत नए गीत। आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह और रात्रि 9:30। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रंग तरंग कार्यक्रम का समय होगा दिन में 11 और दोपहर 12। सुनिए हिंदी में समाचार। 12:05 पर होगा यादों की महफिल कार्यक्रम। सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में तय कीजिए हमारे साथ सफर दोपहर 1 और आप इस कार्यक्रम में कमेंट्स द्वारा फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। दोपहर 2:15 पर होंगे समाचार और 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 3 और दोपहर 4 सुनिए सेहतनामा के पिटारा कार्यक्रम के अंतर्गत सेहतनामा। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक। इसी बीच 6 आप हिंदी में समाचार भी सुन सकेंगे। शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा यानी कि कार्यक्रमों की रूपरेखा। संध्या रंजन ये कार्यक्रम होगा शाम 6:35 पर। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7 और शाम

8 बजे और 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या। शीर्षक संगीत का कार्यक्रम आपके लिए, ये होगा रात्रि 9 बजे और 10 बजे सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर जयंत पात्रिकर का और प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। अभी आपने सुना झरोखा। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का भाग 192।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, भागम भाग के इस जीवन में संगीत हमारे मन को शांति प्रदान करता है। संगीत में अगर भक्ति की धारा हो तो वो संगीत हमें एक अलौकिक संसार में ले जाता है। भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन, इसकी सातवीं कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनूप जलोटा जी। एक बार फिर से आपका हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार सर।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: स्वागत कर रहे हैं तबले पर आशीष झा जी का और हारमोनियम पर अजय जोगलेकर जी का। अनूप जी, आपने अपने भजनों में बहुत सारे राग रागिनियों का प्रयोग किया है, यूं कहें कि घुमावदार सुरों का प्रयोग किया है। अपने गायन में गमक, मीड, खटका, मुरकी, ये सब कुछ देखने को मिलता है। उसके बावजूद एक आम श्रोता बड़े ध्यान से, तन्मयता से सुन सकता है, समझ लेता है। तो ये जो बारीकी के साथ आप खेल करते हैं, उसके बारे में हमें विस्तृत बताइए।
2: सच तो ये है कि किसी भी गायकी के अंग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती, लेकिन जब वो साधना हो जाए, जब वो सद जाए, तो उसको कुछ इस तरह गाना चाहिए कि लोगों को आसान लगे, लोगों को मुश्किल नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब वो गाने की कोशिश करें तो उनको मुश्किल लगे, सुनने में उन्हें आसान लगे, लेकिन जब कोशिश करें तो उनको लगे नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये निकलेगा गले से। तो हमने वही कोशिश की है कि छोटी छोटी मुर्कियां, छोटी छोटी ताने, उसको ऐसे सहज ढंग से हम ले लेते हैं कि सामने वाले को लगता है तो आसान होगा
1: जी,
2: लेकिन जब उसको करने की कोशिश की जाएगी तो पता लगेगा कि आसान नहीं है, इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे गुरु ने इस तरह सिखाया हमको। अब जैसे एक भजन है रंग दे चुनरिया
1: जी,
2: मैंने बहुत साल पहले ये भजन आनंद कुमार जी से सुना था, बहुत अच्छे गायक हैं वो। तो मैंने फिर उसको अपने ढंग से, उस भजन को थोड़ा सा और बढ़ाया, अपने ढंग से गाता हूं। तो सुनने में वो भजन बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब गाने लगो तो लगता है कि आसान नहीं है, इसके अंदर जो काम है
1: जी
2: उसके लिए बरसों लग जाएंगे।

0: वाह, बहुत सुंदर, एकदम मंत्रमुग्ध होकर हम सुन रहे थे। यहाँ पर एक सवाल जहन में आया है, वो ये कि शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का जैसे भेद यहाँ पर मिट जाता है, आप शास्त्रीय संगीत के साथ साथ किस तरह से सुगम संगीत तैयार करते हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा और सबसे पहले शास्त्रीय संगीत ही गाना शुरू किया मंच पे। फिर मुझे लगा कि यदि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं तो माध्यम इसी शास्त्रीय को सुगम करना होगा, और वही मैंने किया, उसी को सुगम किया है। ये शास्त्रीय है लेकिन इसको एक सुगमता दी है, और उस माध्यम से ये ऐसे लोगों तक पहुंच गया जो शास्त्रीय नहीं सुनते थे, और उनकी रुचि शास्त्रीय संगीत की ओर बढ़ गई। ये मैंने कोशिश की है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनूप जी, फिर से वही वक्त आ गया है जो हमें नहीं पसंद है, अनुमति लेने का वक्त आ गया है। तो आज की इस कड़ी से श्रोताओं से अनुमति लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। कल अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तो हमारे श्रोताओं को सुनते रहना है ये श्रृंखला संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं प्यार की राहें इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे मुकेश ने गाया है। कानू घोष का लिखा ये गीत है और संगीत है प्रेम धवन का।

0: तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म सिमसिम मर्जीना से। प्रेम धवन की रचना थी और एआर कुरैशी ने इसे संगीतबद्ध किया था।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनाते हैं मुबारक बेगम की आवाज में केदार शर्मा का लिखा ये गीत जिसकी लय बनाई है स्नेहल भटकर ने। फिल्म का नाम हमारी याद आएगी।

छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए राही फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। प्रेम धवन के बोल हैं जिस पर सुरों को सजाया गया है अनिल बिस्वास द्वारा।

श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवाएंगे, मगर आज सुबह 9:30 बजे आज के फनकार कार्यक्रम में सुनना ना भूलिएगा कलाकार अदाकार फहीदा जलाल को। कार्यक्रम है आज के फनकार और समय सुबह 9:30 बजे। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं लाडली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया है अनिल बिस्वास ने। गीत की रचना की है बहजाद लखनवी ने।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 7:30 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। युगल गीतों के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाए जाते हैं ऐसे गीत जो दो गायक कलाकारों द्वारा गाए गए हैं। तो आइए आगाज करते हैं आराधना फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है
2: क्या?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: गलियों पे निखार है?
2: हाँ है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अभी आपने सुना ये अप्रैल फूल फिल्म का गीत। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: जवान मोहब्बत, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों में, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन की धुन।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आइए अब आपको सुनाते हैं गवार फिल्म का ये गीत। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में रजिंदर कृष्ण ने इसे लिखा है, नौशाद का संगीत।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए, आनंद बख्शी के बोल है, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, फिल्म का नाम मस्ताना।
1: जब जब हम तुमको देखे हैं रिछेला मन मो

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
7: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
9: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वी ए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ

बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी परिवार पर। परिवार मानव जीवन की पहली पाठशाला होती है। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं, बल्कि प्रेम, संस्कार, सुरक्षा और अपनापन का सुंदर संगम होता है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता से हमें अनुशासन, त्याग और मेहनत का पाठ मिलता है, तो वहीं दादा दादी, नाना नानी हमें अपने अनुभवों से सही मार्ग दिखाते हैं। परिवार के बीच रहकर व्यक्ति सहयोग, सहनशीलता, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण सीखते हैं। हर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो माला के धागे की तरह पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन, दादा दादी या माता पिता होते हैं। उस धागे की मजबूती पर पूरे परिवार की एकता टिकी होती है, जिनके बदौलत पूरा परिवार एकजुट एक साथ होता है।
1: फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है।

आज के आधुनिक युग में भले ही लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हों, लेकिन मानसिक शांति और सच्चा सुख केवल परिवार से ही मिलता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, उस वक्त हमारा परिवार एकजुट होकर हमारा सहारा बन जाता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें परिवार का साथ मिलता है। एक अच्छा परिवार समाज की नींव होता है। यदि परिवार में एकता होगी तो ये परिवार समाज में अच्छा उदाहरण बन जाता है। परिवार की वजह से बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है, जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। कुछ खास अवसर पर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, गीत संगीत की महफिल जमती है, तब वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते।

संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

परिवार जीवन का वो अनमोल खजाना है जिसकी कीमत धन दौलत से नहीं आंकी जा सकती। ये वो छाया है जहां मनुष्य हर पीड़ा को भूल जाता है। ये वो आश्रय है जहां आंसू भी मुस्कान बन जाते हैं। पर आजकल तकनीक ने लोगों को पास लाकर भी मन से दूर कर दिया है। मोबाइल फोन की चमक से रिश्तों की मिठास कहीं कम होती नजर आ रही है। इसलिए आवश्यक है कि कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने परिवार के साथ हमें वक्त जरूर बिताना चाहिए। और उस वक्त जब हमारे अपने हो तो मोबाइल फोन को थोड़े समय के लिए दूर रख देना चाहिए। मुश्किल होती है ना, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि परिवार ही जीवन का आधार है, समाज की आत्मा है। आपके परिवार में हमेशा प्रेम और रिश्तों की मिठास बनी रहे और घर स्नेह की रोशनी से हमेशा जगमगाता रहे। एक

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मल

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करेंगे आज इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है शंकर महादेवन ने। प्रसून जोशी की रचना है, शंकर एहसान लॉय का संगीत, फिल्म का नाम मणिकर्णिका।

चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम के अगले गीत। दिल धड़कने दो फिल्म का नाम है, सुकृति कक्कर सिद्धार्थ महादेवन इन्होंने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत, जिसे सुरों में ढाला है प्रीतम ने। फिल्म का नाम दिलवाले।

श्रुतलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत। श्रेया घोषाल, गणेश चंदन सिवे और मुतजबा अजीज नाजा की आवाजें।

बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गीत को लिखा सिद्धार्थ, गरिमा, नासिर फराज और गणेश सर्णसिव ने, और इस गीत की को संगीत से सजाया साहिल, प्रीतेश और नितिन शंकर ने। और लीजिए अब आपको सुनाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है अजय अतुल का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और अब वक्त है एक अंतराल का।

क्षेत्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए गब्बर इज बैक फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में। मनोज यादव ने इसे लिखा है, चित्रंतन भट्ट का संगीत।

आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। ये दिन एचआईवी एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन खोजने वाले वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के प्रयासों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और ये समझना है कि सही जानकारी, सावधानी और समय पर जांच से इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। सुरक्षित जीवन शैली अपनाना, जागरूक रहना और भेदभाव से दूर रहना बेहद जरूरी है। आइए हम सभी मिलकर एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाएं और एक स्वस्थ, संवेदनशील समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म हमारी अधूरी कहानी से। श्रेया घोषाल की आवाज, रश्मि विराग के बोल और जीत गांगुली का संगीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। संग्रहालय हमारी संस्कृति, इतिहास, कला और विरासत को संजो कर रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ हमें प्राचीन वस्तुएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ कलाकृतियां और सभ्यता, इन सब की अनमोल झलक देखने को मिलती है। संग्रहालय केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। आइए इस अवसर पर अपने इतिहास और संस्कृति को समझने, सहेजने और उससे जुड़ने का संकल्प लें। और लीजिए, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत, मीका सिंह और नक्श अजीज की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल हैं, ए आर रहमान की धुन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक पहेली लीला। इस फिल्म का गीत सुनिए मीत ब्रोज अनजान और अरिजीत सिंह की आवाजों में। कुमार के बोल मीत ब्रोज अनजान का संगीत।

मीत ब्रो संजान और अरिजीत सिंह की आवाजों में गाए इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: बागों में बहार
1: है। वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका निभाई।

1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

0: एक और फिल्म आई थी सन 1974 में, काला सोना। इसमें इनकी भूमिका थी बेला।
1: हाँ, सुन, सुन, सुन, सुन,

चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका

1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी, जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म में पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया, फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

मीना जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

0: अरे ना रे ना रे ना।
1: सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया, जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की, साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आईं। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ, जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और

0: फरीदा जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।
1: जब

आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: यह हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

पिटारा में आज उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
0: जी जी जी।
1: हाथ पाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है, तो भी जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म और एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह सा भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई
0: हाँ
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
0: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
1: जी जी
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सेटिंग में स्टोरी सेटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट है, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डेटे भी जाएंगे वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटा एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी जी जी।
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके।
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने काम मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले, तो मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुनो ने कहा ये आर्ट फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब ओरिजिनल जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं कुछ और डालते हैं, तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले, और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया ऐसी कोई औरत, और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी,
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। हाँ, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा कह रहे हैं, बोला यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया चंद्र से शुरू में जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मुझे राखी जी ने ऐसे पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया,
0: फिर उन्होंने कहा तो बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब

0: कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फला क्यों नहीं, मीटर रूम अच्छा नहीं, कभी कोई बात नहीं की,
1: जी जी जी
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूँगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं,
1: हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई,
1: हाँ
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था
1: तो
0: ना,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली
0: तो
1: फिल्म थी आपकी।
0: पहली फिल्म और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से, वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना वो जाओ भाई दूसरे के पास, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर जो होना था, 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ कितना उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे, और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे, उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन। अगली पिक्चर जो थी मेरे को शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन जी रिलीज कर रहे थे।

0: आप
1: मौसम है, चल कहीं
0: बहुत
1: दूर
0: अच्छा,
1: निकल
0: बहुत
1: जाए।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कह रहे हैं। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूं कि 2 पेज की कहानी का वो था, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यजी से थोड़ा सा रूठा था दूसरे आदमी के उतरने के बाद।
1: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए,
0: किसके?
1: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे
1: हाँ
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम दाब के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा,
1: अरे
0: हम
1: वाह,
0: दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई,
1: जूली
0: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप
1: कुंवारा बाप मिली।

0: आपको अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसे से कहा ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा सारा मुश्किल होता है तुझे, बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तो मैं इससे मिलने गया। बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे। बोला करूँगा, और उसने पिक्चर ले ली, उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले
0: बहुत। नहीं फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा,
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है गाने तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था
1: घर,
0: वो कुछ हुआ था ऐसा। मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और नशा जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है नशा जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म एक बनाई है, मजरू साहब ने इसलिए दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब,
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर,
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी।
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जियो जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसर ने कह दिया था क्या मेरे साथ करो पिक्चर, ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो हुआ। ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, अगर साइन में रहता तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे का शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलाते थे शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर,
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तू शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अभी, वो करे तू भी कर एक पिक्चर, दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेजे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि रमेश तलवार को ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बचेरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी
1: मराठी में,
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
1: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया। तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदत फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे एंजॉय करते थे लाइफ को, वो छह महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए।
0: यस
1: ये था, रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ एक महीने बाद आऊंगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
0: वाह वाह,
1: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
0: पुरानी दोस्ती है ही,
1: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी गुलजार पापा
0: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे आपका और आर डी बर्मन का, वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप।
0: बाबा
1: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लगेगा डायलॉग एंड मेमोरी करना, तो स्क्रीन प्ले स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगेगा कि यार आपको किसी बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया, तो उनका नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रास की फिल्म की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ।

0: नूतन के साथ में कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था उनका। उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा, सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
1: उन्होंने ही बोला।
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को। तो बोले मैं अभी फोन करती हूँ। उन्होंने फोन लगाया। रेखा ने कहा मैं यहाँ व्यू पार्टनर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर। एल्बम वेल्बम देख रहे, पुराने किसी के देख रही थी, और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर, समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा ऐसा सुना लो, लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं, खा क्या रहा हूँ। अच्छा 2 मिनट में खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी। मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी, इंटरवल
1: डन हो गया।
0: तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश भाई को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया। रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब साहब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा? शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, कि हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है और ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक लिस्टेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक इज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग
1: वाह,
0: काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है, बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने, वो मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपका आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूं। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुंच गया, सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना, फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में, चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था, 420 की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को,
1: जी,
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी। नटराज स्टूडियो गेट से कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ
0: गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूं, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूं।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहें शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है,
1: हाँ
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
1: जी,
0: और ये बात बता दी। मैं
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे।
0: मैं ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया, तो
1: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है।
0: जी
1: जी
0: दूसरा
1: जी
0: आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है,
1: हाँ
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके
1: हाँ
0: सामने?
1: हाँ
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ हाँ
0: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह
1: हाँ
0: नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे
0: और फिर करें। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे, करूंगा तेरे। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था, तो वहां पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहां पहुंचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूंगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया।
0: हाँ होगी, और मतलब यह है कि डेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा।

अभी से निकल, मैं ये कर रहा हूँ, राज्य की पिक्चर ले वो चल रहे हैं सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करूँ, दिसंबर जनवरी में, तो ये कुछ अप्रैल मई जून था, ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है थोड़ी, वैसे भी तू ये सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या कब दो और दो चार चीजें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं
1: नहीं बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया स्पेशल, डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूंगा। बैठे हुए सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है, सेट पे आओ शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी।
0: वाह वाह,
1: चाहे ट्यूजडे है चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड, ट्यूजडे नहीं करूंगा सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी,
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: क्या
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहां आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहां पहले शिव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह,
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की,
0: हाँ,
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार,
0: हाँ,
1: तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो कहता यार रोल छूटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूँगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है, और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा रमेश बैल सब ये सब, और बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए आप 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा सकता ऐसे, हाँ, नहीं
0: हाँ, हाँ,
1: रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर वो सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था, और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरी पिक्चर, वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो 7 वाले बंगले में था, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है वो क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं बियर पिएगा, वहाँ पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बार बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंडू करके आया ठंडी में कांप रहा हूँ, साले ये मर जाएगा कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कौन है एक्टिंग? नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं होती। तो यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन में डाला हुआ है।
0: अच्छा,
1: यश जी को मैंने सुनाया था। कौन एक शराब नहीं होती। तो

0: बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी।
1: हाँ
0: फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया संत मुझे। फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ। तो वो बुला लेता था, बियर पीनी है तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
1: अच्छा।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले

0: रंग तरंग
1: सभी सुनने वालों को नमस्कार। रंग तरंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। यह है लकी अली की आवाज, असलम के बोल और लकी अली का संगीत।

0: Good one.
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सोनू निगम की आवाज में आपने सुने फैज अनवर के बोल और साजिद वाजिद की धुन, और अब सुनते हैं सोनू निगम की ही आवाज में ये गाना। नुसरत बद्र के बोल हैं सोनू निगम की धुन।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं तेरे बिना अल्बम से अभिजीत की आवाज में नुसरत बद्र के बोल और सप्तर्षि का संगीत।
1: छेतो कहो

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। स्टीव का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कित

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अदनान समी और आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना, बोल रियाजुर रहमान सागर के हैं।

0: शान की आवाज़ में ये गाना अभी आपने सुना और यही है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: रंग

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
0: श्रोताओ, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
0: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
0: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न

0: ओढ़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार कृष्ण कुमार जी। आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
0: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी,
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक की कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: Hello children, how are you?
3: We are fine, sir.
4: I am fine.
5: I am good, sir.
2: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
10: Yes, sir, we like.
2: Lovely butterflies?
11: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
11: Yes, sir, we like it.
2: That's very nice, children.
12: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it? The rivers, the mountains, and the green trees.
11: Yes.
2: okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
13: Like her?
2: Would you like to listen?
13: Yes, sir.
12: We love to listen the story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
13: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
13: Okay, sir.
14: We love to recite it.
2: As I lie on my back.
13: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
13: Looking up at the sky.
2: I see a big white bear.
13: I see a big white bear.
2: Looking down at me.
13: Looking down at me.
2: As I lie on my back.
13: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
13: Looking up at the sky.
2: I see a ship sailing.
13: I see a ship sailing.
2: On a white sea.
13: On a white sea.
2: As I lie on my back.
13: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky. I see an elephant.
13: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me.
13: Waving its trunk at me.
2: As I lie on my back.
13: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
13: Looking up at the sky.
2: Oh, it's fun. It's fun to me.
13: Oh, it's fun. It's fun to me.
2: To see whatever I want to see.
13: To see whatever.
2: So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
13: Yes, sir.
12: They are beautiful.
5: They are very big.
8: They change the shape.
2: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
13: Yes, sir.
2: So, kids, here comes the song. As I lie. What?

0: colors from time to time.
1: I have seen rainbow.
2: It has 7 colors.
0: So children, whenever you see the clouds, they have different
3: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
3: colors.
0: Very nice. Show of clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajender Pal. Technical coordinator, Bati Langlindo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
4: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
5: नंगे पांव, धोतीनुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने
6: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
7: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
5: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
8: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
0: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
9: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
0: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
10: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागवानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही

0: की उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए।
1: तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना?
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
4: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का।

0: कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाहिला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपके कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजें थी, रविंद्र रावल के बोल थे, और अब सुनवा रहे हैं आपको ये गाना।

फिल्म लोफर का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
0: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं वास्तव फिल्म का गाना सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

देते रहो।

फिल्म पारस का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में वर्मा मलिक के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मजबूर का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ क्या मैं अंदर?
1: ये है फिल्म महल का गाना, आशा भोसले की आवाज में। साथ में आप सुन रहे हैं देवानंद की आवाज।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है।

आशा भोसले और डैनी की आवाजों में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म काला सोना का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का सादर नमस्कार। और आज का सुरीला सफर है बन रहा कुछ अलग ही ढंग से, क्योंकि आपके संदेशों में बात है आज की और गुजरे हुए कल की। तो अब आपको बता देते हैं आज का टेक्स्ट। जैसे हमारे कुछ श्रोता जो कि फेसबुक पेज पर, जहां पर गीत भी मिलते हैं और मीत भी मिलते हैं, वहां पर उन्होंने ये टेक्स्ट देख ली होगी। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता देते हैं आज की ये बार।

कई बार कुछ ऐसा होता है कि गुजरा हुआ वक्त चुपके से दबे पांव मन में चला आता है और किसी जादूगर की तरह साकार कर देता है वो बीता हुआ पल। जब कोई मिला या कोई बिछड़ गया, कुछ टूट गया, कुछ छोड़ दिया या कुछ पा लिया, वो पल जहां मन के बावरे पंछी संग रोके नहीं रोकी उमंग, या जहां किनारे पर डूब गई दिल की कश्ती। यादों की उन गलियों में भटकता ही रहे मन, लेकिन सितारे मेहरबान हो तो पुकार लेता है वर्तमान, ओ मितवा आ जा रे। इस गली में कहीं खो सकता है आपका आज, जल्दी से आगे बढ़कर थाम लीजिए अपने आज का हाथ, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं। तो चलिए उसी राह पर जिस पर खड़ा है आज, अभी यहीं। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर आपने चुन लिए हैं गीत। भाई, गीतों की इस लिस्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है, और हमारे कुछ साथियों ने बताया है बहुत सारे गीतों के बारे में। एक श्रोता ने बताया है, कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना चुपके से दिल दे दे, चला जाता हूं किसी की धुन में, जादूगर सैया, इस तरह के उन्होंने करीब 15 गीत छांटे हैं। वाह, क्या बात है, गीतों के मामले में कितने संपन्न हैं हमारे श्रोताओं की याददाश्त। वाकई इस बात का हमें कई बार ये भी लगता है कि कितने ज्यादा गीतों से जुड़े हुए लगाव है आप सभी को। एक श्रोता का जो संदेश है वो कह रहा है कि उसमें कुछ यूं कहा गया है कि आज की भारत ने मन के पक्षी को अतीत में ले गया। सही कहा गया है, आप भूगोल बदल सकते हैं, इतिहास नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। यह अतीत सुनहरा या कड़वा हो सकता है, मगर वे लम्हे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। बेहतर है बीते अतीत के बुनियाद पर जीवन को बुलंद कर वर्तमान में जीना ही सार्थकता है, क्योंकि वर्तमान ही हकीकत है। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई में छिपे यादों के मोती अक्सर हमारे दिल के आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी हवा का एक झोंका, किसी पुराने पन्ने की खुशबू, या रास्ते में मिला कोई जाना पहचाना चेहरा हमें गुजरे जमाने की गलियों में वापस ले जाता है। वो लम्हे जो पीछे छूट गए हैं, छूट गए थे, अचानक सामने आकर दिल को एक अनूठे सुकून और भीगी हुई उदासी से भर देते हैं। वाह, क्या खूबसूरत बात कही है। तो बताइए कि आज कई बार वो याद जो ताजा हो जाती है किसी ऐसे ही पुराने पन्ने की खुशबू के साथ, या हवा के किसी झोंके के साथ, या किसी जाने पहचाने चेहरे के साथ, कभी बहुत साल पहले गुजरी थी जो बात, वो बात ताजा हो जाती है। तो उस बात के बारे में हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पुरानी यादों या बीते हुए वक्त की खुशनुमा या कठिन परिस्थितियों के पल जब भी स्मृति पटल पर पूर्व दीप्ति बनाने लगते हैं तो मन में एक भावुक संवेदना जागती है। ऐसे में मन का पंछी पुरानी यादों को एक नई उमंग और उम्मीद के साथ फिर से उड़ान भरने लगता है, और एक सकारात्मक सोच मन में आती है कि फिर एक बार कोई प्यार से पुकार ले। अपनी सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत से निकले शब्दों में कई बार कुछ ऐसा गुजरा वक्त चुपके से दबे पांव मन आपका आज चला आता किसी जादूगर साकार बीता पल मिला जल्दी गली मितवा आगे बढ़ थाम लीजिए जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गुजरा हुआ जमाना बीता हुआ वक्त और पुरानी यादें किसी जादूगर की तरह चुपके चुपके हमारे वर्तमान में लौट आती हैं। समय और यादों का ये सफर इतना गहरा होता है कि कई बार कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ पुरानी बातें और कुछ मधुर स्मृतियों के गीत अचानक दिल में उतर जाते हैं। भले ही आप दूर हो पर वो पल तो अचानक ही सजीव होकर आपके साथ हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने, और उन्हीं स्मृतियों के बारे में हम पूछ रहे हैं, उन्हीं खट्टी मीठी यादों के बारे में आप पूछ रहे हैं हम आज, जो आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले या आज से 10 साल पहले गुजरी हो और आपको आज भी याद करा देती हूं। ये गाना सुनिए और बताइए कि ये किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

हमारे एक श्रोता ने खुशी जाहिर की है कि वाह, मेरी लिस्ट का पहला ही गाना मिल गया। बिल्कुल सही बात। जवाब भी आए हैं बहुत ढेर सारे, ज्यादातर दिनेश ठाकुर या अमोल पालेकर जी की बात हुई है। एक श्रोता ने राजेश खन्ना का भी नाम लिखा है, ये रजनीगंधा फिल्म का गाना है। योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत और गाना बैकग्राउंड में चलता है। दरअसल शुरू ये विद्या सिन्हा के चेहरे से होता है और बाद में फिर दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर भी इस गाने में नजर आते हैं। तो भाई ये जो गाना है कि कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है तो मन तोड़ता है जब वो सीमा रेखा, और कूद जाता है जाके जल्दी से अतीत की गलियों में। ऐसा जब कुछ आपके साथ हुआ हो, उस वक्त के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। बताइए हमें, आज से 10, 15 या 20 साल पहले ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आज भी याद करके या तो आप हंस पड़ते हैं या फिर दूसरों को हंसी आ जाती है। संदेश है एक श्रोता का, कहते हैं कि समय किसी के रोके नहीं रुकता, वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, उसको पकड़ कर चलने में ही समझदारी है। वक्त के साथ ही लोग मिलते और बिछड़ते हैं। हमारा बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ आज में जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और श्रोता कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमें यह एहसास जरूर दिलाती हैं कि हमने जीवन में कितना कुछ जिया है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें, कुछ बिछड़े रिश्ते, यही सब मिलकर मन एक ऐसी व्यथा पैदा करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। यादें हमारे भीतर चुपचाप सांस लेती रहती हैं, कभी रात की खामोशी में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी अकेलेपन की किसी लंबी शाम में वे फिर दस्तक देती हैं। बहुत सुंदर। एक और श्रोता ने आज शीर्षक से कुछ बात कही है। आज कोई ठहरा हुआ समय नहीं, बल्कि ये वो द्वार है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि जीवन केवल आज में ही धड़कता है। जो व्यक्ति आज में जीता है, वो किसी भी कार्य को पूर्ण समग्रता से कर सकने की क्षमता रखता है। यही पूर्णता ही ध्यान यानी मेडिटेशन है। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि अतीत के सबसे मोहक पलों में से एक होता है बीता हुआ समय। समय अपने अंदर कितना कुछ समोए रहता है, किसी अपने का मिलना बिछड़ना, यादों के तिलिस्म के ना जाने कितने दरवाजे हैं, मगर जीवन तब जीवन की तरह खिल उठता है जब कोई अपना हमें पुकार लेता है। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आते हैं, ऐसे में उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो है वो बस आज में है, इसी पल में है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक और श्रोता ने बताया है कि सुरीला सफर में कुछ गाने, गुजरा हुआ जमाना, वक्त, पल, मितवा, कश्ती आर सच वर्ड्स ऑन विच टूडे सुरीला सफर विल गो ऑन, द रेस्ट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपकी लिस्ट में इसने आपने जो शब्द चुने हैं, देखिए उन पर गाने आ रहे हैं या नहीं, और सोचिए तो कोई गाना आपके ख्याल में आ रहा है या नहीं। लेकिन अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे श्रोताओं ने। मधुबाला पर फिल्माया गया है शीरे फरहाद फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल थे और एस मोहिंदर का संगीत था। श्रोताओं ने अपनी कुछ यादें भेजी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे उस समय की रिलीज हुई नई फिल्मों के गाने बहुत ज्यादा पसंद आते थे, पर जो जो समय बीतता गया मुझे ज्यादा पुराने गाने ज्यादा पसंद आने लगे। आज के समय में तो मुझे नए गाने बहुत कम पसंद आते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि आजकल किसी छोटे बच्चे को शरारते करते देखती हूँ तो अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है। तब की उनकी शरारतें कभी गुस्सा दिला जाती थी, आज याद कर मन को गुदगुदा जाती हैं। वो वक्त कितना जल्दी गुजर गया जिसे फिर से जीने का मन करता है। काश वो गुजरा हुआ जमाना फिर से आ जाता। बिल्कुल सही बात है, वो पल बीत जाते हैं लेकिन हम उन्हें याद करते रहते हैं। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, फिर भी हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वाकई एक और श्रोता ने आज की इबारत को पढ़कर सुरीले सफर में गुजरे हुए पलों की बातों से संबंधित गीतों को तवज्जो दिया गया है। ऐसा लिखा है, हर इंसान के जीवन में गुजरे हुए पलों की यादें सुखद और दुखद दोनों हो सकती हैं। सबसे ज्यादा बचपन से जुड़ी हर लम्हा और उनकी यादें बहुत कचोटती हैं। काश कोई खोया हुआ बचपन फिर से लौटा दे, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार पुराने सुनहरे पल हमें अपने उससे जोड़ते हैं। पुराने पलों की उन बातें जो अच्छी हैं उनके लिए कृतज्ञता महसूस करें, लेकिन जो पल बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। उन्होंने कुछ गानों के नाम भी दिए हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। अपनी यादों को हमारे साथ साझा करने के साथ साथ एक बात और, आज विश्व संग्रहालय दिवस है तो बताइए कि संग्रहालय में ज्यादातर गुजरे जमाने की इतिहास की उन अनमोल यादों को संजोया जाता है जो बहुत खास होती हैं। कभी आपने कोई संग्रहालय देखा है या बचपन में कभी गए हो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं।

0: सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और भाई संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपना विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो निश्चल हंसी, उफ क्या बात है। तो भाई देखिए ना, किसी की हंसी, किसी की बात या किसी का टोकना भी याद रह जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, जो बीत गया सो रीत गया, जो बच रहा वो यही पल है जिसका इस्तेमाल हम सब VBS के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, विविध भारती के साथ आपका ये पल कैसा गुजर रहा है इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने जो भेजे हैं हमें गानों के, बताइए कि ये पल, ये जो गाने हैं, ये आपके लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। एक श्रोता ने कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके चुपके चल रही पुरवैया और जादूगर जैसे बहुत सारे गानों का अपना लिस्ट बना के भेजी है। एक श्रोता ने गुजरा हुआ जमाना वापस तो नहीं आ सकता ये कहते हुए अपना संदेश आगे लिखते हैं कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं। मसूरी के कैंटी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का वो दृश्य सामने आ जाता है, जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और दो तीन साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभयारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में 2 दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में लिए गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने सजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था। और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते शोरम।

राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया कि मैसूर का किला देखा राजा का पुराना राजमहल है। विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एक श्रोता बता रहे हैं कि 1989 में मुंबई के संग्रहालय पुरानी वस्तुओं यादगार चीजें धरोहर विरासत ये म्यूजियम उन्होंने 2 बार देखा है। म्यूजियम में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है या जब भी देखा किस चीज को के सामने आप बड़ी किस जो शोकेस में लगी रहती हैं तमाम चीजें उनमें से किस शोकेस के सामने आप काफी देर तक खड़े रहे अगर याद हो तो जरूर बताएं। और हाँ तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई, कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तक उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही। श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने, मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफर की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार डूलने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है, इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें हंसी खुशी जिंदगी बिता दो। वक्त का पहिया न कभी रुकता है न रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे VBS के सुरीला सफर में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफर सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने, वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है हमें जल्दी से बताइए। और हाँ संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी जरूर बताइएगा।

इस गीत का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं। क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको? उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन, फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी किसी श्रोता ने मोनीश जी का नाम भी, यानी मोनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा जिला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है, जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूँ। अपने भाई बहनों के साथ वाले फोटो और अपने बच्चों का बचपन का फोटो, परिवार का फोटो, सभी जब भी फुर्सत में रहती हूँ जरूर पलट कर देखती हूँ और कुछ उसमें से फोटो निकाल कर उनसे संबंधित लोगों को शेयर भी करती हूँ। वाह, ये तो पुरानी यादें ताजा करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि तस्वीरें खींचने और खिंचवाने का जबरदस्त शौक है और उनका संग्रह करना भी, न सिर्फ एल्बम में बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, सबके मेमोरी में भी संभाल कर रखती हूँ और गाहे बगाहे उन्हें पलट कर देखने का भी शौक है। परिवार में सबके शादी ब्याह की तस्वीरें अपने पास रखना अच्छा लगता है वाकई, और जब देखते हैं ना वो तस्वीरें तो फिर याद आ जाती हैं वो सभी बातें और वो अच्छा हल्का फुल्का वक्त जो गुजरा था उस वक्त। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी की लड़की जो मेरी बहन थी सन

भी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज की भारत यादों की एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहाँ क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों ना हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा, वक्त को पहचानो। अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही बिताना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहते हुए। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।

अमरदीप फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने। छोड़ दे सारी दुनिया सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर

पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नजदीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहां गया था, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले फिल्म यूनिट वहां से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदन कानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लैनेटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफर में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है। वाकई कई बार ऐसे जोखिम से तो बचना ही चाहिए। और बात हो रही है पुराने इश्क की, तो बड़ी सुंदर सी कविता साझा की है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखी है, कभी कभी पुराना इश्क बरसों बाद भी दिल के किसी कोने में धीमी आंच सा जलता रहता है। ना वो आवाज देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस अचानक किसी बारिश, किसी गीत या किसी खामोश शाम में याद बनकर उतर आता है। बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली कविता है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जल्दी पढ़ रही हूँ। बड़ा ही सुंदर शब्द है। वो इश्क भी अजीब था, न पूरा मिला न कभी पूरा तरह बिछड़ा, बस जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाजा खटखटाती है, उसकी हंसी, उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं। मगर अब न कोई गिला है, न किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं, याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे साथियों ने। हवस फिल्म का ये गाना संगीत उषा खन्ना का। और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहां गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाह कर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो, ठीक है, चलिए, आपने छुपते छुपाते बात कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता, जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है, बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर बुढ़ापे के तजुर्बे तक, ये सफर इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज हवाएं कौन, वक्त की धूप हो या तेज हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहाँ, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता जरूर है, लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है, इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है, सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है। परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभिप्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है।

वाकई दुनिया फानी है और कुछ ही पलों का साथ रहता है सबका। हमारा आपका साथ भी अब शायद कुछ ही पलों का है और अगले गीत का शायद हम आपको थोड़ा सा हिस्सा ही सुनवा सके। जवाब बिल्कुल सही भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। द बर्निंग ट्रेन फिल्म में गाना ट्रेन में फिल्माया गया जितेंद्र नीतू सिंह आशा सचदेव पर, बिल्कुल सही जवाब। और एक याद ताज़ा की है प्रेम की। 8वीं कक्षा में पढ़ते अधकचरे प्रेम की याद बहुत बात समझ पाए। मैं कक्षा में आगे बैठता तो एक 14 साल की लड़की बार बार हमसे मदद मांगती, ये सवाल बताओ, ये ट्रांसलेशन बताओ। मेरी आधी कुर्सी पर बैठ जाती, मैं उसकी कॉपी पर जवाब लिखकर डांट देता था। बाद में एक एक्सीडेंट में घायल वो बहुत दिनों की पीड़ा के बाद गुजर गई। उसकी सहेली ने बताया था वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उफ उफ उफ, ये जो जानकारी बाद में होती है ये सच में दिल तोड़ देती है। एक और श्रोता ने अपनी 1990 में हुई शादी की जो पोस्टकार्ड साइज के 100 फोटो याद के लिए अभी भी सुरक्षित रखे हैं, क्या बात है। ऐसी यादें तो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बड़े दिनों तक गुदगुदाती रहती हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि वर्तमान के महत्व के सुंदर भावों में व्यक्त करती है आज की इबारत। स्मृति कभी खुशियां देती है तो कभी बिछड़ने और टूटने का दर्द याद दिलाती है। मन अक्सर यादों की गलियों में भटक जाता है, लेकिन जीवन हमें यह संदेश देता है कि बीते कल में खोने के बजाय आज को संभालना जरूरी है। समय की कभी रुकता नहीं, इसलिए वर्तमान का हाथ थाम कर जीवन को जीना ही आज का सबसे बड़ा सच है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। वैसे समय में कल आज और आज कल में बदल जाएगा और जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जो समय तेरा था वो तेरा होके तेरा ना रह जाएगा। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी बात पर ये गीत सुनिए और बताइए कि आवाजें किन की हैं। साथ ही चलते चलते फिल्म का नाम भी बता दीजिए।

हम पुकारे रहे थे कि जवाब आ गया। फिल्म परिणय का गाना है ये। आवाजें मन्ना डे और वाणी जयराम की हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म। तो सुरीला सफर के इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी परिवार पर। परिवार मानव जीवन की पहली पाठशाला होती है। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि प्रेम, संस्कार, सुरक्षा और अपनापन का सुंदर संगम होता है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता से हमें अनुशासन, त्याग और मेहनत का पाठ मिलता है, तो वहीं दादा दादी, नाना नानी हमें अपने अनुभवों से सही मार्ग दिखाते हैं। परिवार के बीच रहकर व्यक्ति सहयोग, सहनशीलता, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण सीखते हैं। हर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो माला के धागे की तरह पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन, दादा दादी या माता पिता होते हैं। उस धागे की मजबूती पर पूरे परिवार की एकता टिकी होती है, जिनके बदौलत पूरा परिवार एकजुट एक साथ होता है।
1: फूलों में

आज के आधुनिक युग में भले ही लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हों, लेकिन मानसिक शांति और सच्चा सुख केवल परिवार से ही मिलता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, उस वक्त हमारा परिवार एकजुट होकर हमारा सहारा बन जाता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें परिवार का साथ मिलता है। एक अच्छा परिवार समाज की नींव होता है। यदि परिवार में एकता होगी तो ये परिवार समाज में अच्छा उदाहरण बन जाता है। परिवार की वजह से बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है, जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। कुछ खास अवसर पर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, गीत संगीत की महफिल जमती है, तब वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते।

ఏ శంజు, ఏ బిజు, ఏ మున్ని, తుంబి గావ్.

परिवार जीवन का वो अनमोल खजाना है जिसकी कीमत धन दौलत से नहीं आकी जा सकती। ये वो छाया है जहां मनुष्य हर पीड़ा को भूल जाता है। ये वो आश्रय है जहां आंसू भी मुस्कान बन जाते हैं। पर आजकल तकनीक ने लोगों को पास लाकर भी मन से दूर कर दिया है। मोबाइल फोन की चमक से रिश्तों की मिठास कहीं कम होती नजर आ रही है। इसलिए आवश्यक है कि कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने परिवार के साथ हमें वक्त जरूर बिताना चाहिए। और उस वक्त जब हमारे अपने हो तो मोबाइल फोन को थोड़े समय के लिए दूर रख देना चाहिए। मुश्किल होती है ना, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि परिवार ही जीवन का आधार है, समाज की आत्मा है। आपके परिवार में हमेशा प्रेम और रिश्तों की मिठास बनी रहे और घर स्नेह की रोशनी से हमेशा जगमगाता रहे,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम

0: भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
1: इस यात्रा के दौरान छह प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
3: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
4: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ मन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
5: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आपने ट्यून किया है देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गीत हलाकू फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानिया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: बैठे ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की ये खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठते हमसे हाँ। देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठते हमसे हाँ।

0: कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: देखो कसम से

0: दिल लेकर मीठा से गम का ये तोहफा देने वाला गीत आपने सुना फागुन फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलाल आबादी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं नई दिल्ली फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज है, शैलेंद्र के बोल, शंकर जय किशन का संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही

आइए सदाबहार नगमे का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी की धुन। फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

जीवन की वीणा पर बसता रहे यूं ही मीठा मीठा प्राणों का राग और जीवन में छाई रहे बहार। इसी संदेश के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं।

0: सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। पर आखिर स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली
0: बस
1: है।
0: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
1: बिल्कुल। तो
0: नमस्कार
1: भाई
0: मंजरी का
1: हाँ
0: भी।
1: हाँ आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और साथ में हमारी जो सखिया में सखा भाई सुन रहे हैं उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह लेते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग
0: मुद्दत
1: मिले,
0: हो गई।
1: मुद्दत हो गई, जमाने गुजर गए, आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देख कर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी। तो
0: मुझे
1: भाई
0: भी बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी
0: तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या-क्या खास बातें हैं?
1: भी खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए
0: क्या बात है?
1: हैं, जिसमें बनारस की टमाटरी चाट
0: हाय
1: और
0: हाय,
1: छेना दही बड़ा।
0: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर
1: पहले
0: दिया।
1: ही कर दिया। मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी, आपने बोला था, मुझे याद है। तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजू जी कोई चीज मुझे एक दे देंगे तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएंगी, पिलाने खिलाने की। तो चलिए ये तो हो गई बातें हमारे व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय
0: ये
1: है,
0: तो बहुत ज्वलंत
1: ज्वलंत
0: समस्या
1: समस्या
0: है,
1: है
0: क्योंकि ये तनाव
1: जी।
0: तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे
1: लगे
0: हुए
1: रहते
0: हैं।
1: हैं
0: हाँ,
1: जी।
0: और
1: तो
0: आज एक खास दिन भी है।
1: जी
0: खास एक क्यों, दो दो खास
1: दो
0: दिन
1: खास
0: है।
1: दिन है,
0: हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और कथा सुधा लेकर हम आए हैं। तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
0: बड़ी मजेदार कहानी है।
1: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। लेकिन उससे पहले राजुल जी क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ, बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही हैं तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी, कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना
1: जी
0: हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और
1: बहुत ही
0: भाई सुनने, शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी।
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की,
1: साथ
0: जुदा
1: रहने
0: ना
1: की,
0: होने की,
1: बिल्कुल
0: और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल। तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे, तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई, इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
2: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
3: देहात की बकरी है, यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
2: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला,
4: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता।
2: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
4: चलिए मैं रख देता हूं।
2: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
0: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
2: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रे चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक न था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार मेमे का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दे को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं, बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था, न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज, 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी, उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांधकर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी, एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। लाहौल विला कुवत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुर जाते थे और जी जल रहा था वो अलग। ये तरकीब और भी तकलीफ देह साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदि है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या था चुप। मुझ पर उसकी कर्णकटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने? और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा? सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं? अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा, यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं, सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हाँ, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
4: कौन कौन है, कौन है रे, कहां से पत्तियां तोड़े लाता है, कौन है?
2: मुझे मालूम हुआ, नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
5: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
2: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकालकर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
5: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
2: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
6: हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं।
2: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
6: मरका ही है क्या बाबूजी?
2: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
6: अभी तो दूध देती है।
2: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
6: दूध आपके घर पहुँच जाया करेगा बाबूजी।
2: तुम्हारी मेहरबानी।
6: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
2: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काछी के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दुहलाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
5: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
2: हाँ, बहुत खूबसूरत।
5: ये चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
2: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
5: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
2: चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
6: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
2: देवी जी ने कहा,
5: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
2: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से ना वो गडरिया नजर आया, ना वो बकरी, और ना मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी, उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
7: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रिकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गड़रिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
8: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजिन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए, कजिन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
1: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए
1: फिर
0: हम
1: से स्वागत है।
0: जी और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है, इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है।
0: जी, और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है,
0: जी
1: एचआईवी, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा
0: जी
1: से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि
0: बिल्कुल,
1: कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर एचआईवी की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही एचआईवी एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, इस बात की कोशिश करता है, और
0: बिल्कुल
1: स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके एचआईवी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी
0: संदेश
1: बल
0: है
1: देता है।
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं

0: होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
1: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको
0: जी
1: संरक्षित करने के उपाय करें और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो हैं वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो
0: बिल्कुल
1: देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार
0: छूते
1: बार
0: हैं,
1: हाथ
0: हाँ
1: लगाते
0: वो सब
1: हैं,
0: नहीं करना
1: और
0: चाहिए।
1: कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
0: रिंग सील
1: रगर
0: लगा
1: रह
0: रखी है,
1: रहती है,
0: डोरी
1: हाँ
0: लगी रहेगी
1: डोरी
0: या
1: लगी, जिससे कि बाधक बाधा रहे ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब
0: अच्छा
1: पुराने,
0: नहीं
1: बहुत
0: लगता
1: समय
0: है।
1: से संजो कर रखा गया है,
0: जी
1: इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
0: पहुंचाएं, सही बात है। और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी, उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स में,
1: कई
0: तो बड़ा अच्छा
1: संग्रहालयों में
0: लगता है।
1: शोज भी होते हैं,
0: जी
1: कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा
0: बिल्कुल,
1: उस
0: करीब
1: वक्त के
0: पहुंच
1: बारे में।
0: जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो
1: और
0: चलिए
1: हम
0: गीत
1: करीब पहुंच रहे हैं
0: के
1: गीत के।

0: स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ
1: चलिए
0: उसमें
1: चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं।
1: हाँ ठीक है।
0: बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देसी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक, और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मिर्ची, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी, थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन,
1: अरे
0: सेव,
1: वाह,
0: पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे, और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं, और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये
1: तो
0: हमारी
1: हमारे
0: चाट।
1: एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि
0: बिल्कुल।
1: जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है,
0: तो बस आप
1: तो ये
0: बताइए,
1: मिठाई है नमकीन,
0: ये आप पढ़ेंगे सामग्री
1: अभी पता लग
0: बताएंगी।
1: जाएगा। तो भाई छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताजा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर, और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, 2 कप ताजा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो
0: जी
1: वो फट जाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली, चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं,
0: क्या बात
1: चाहे
0: है।
1: तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपने बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच
0: जो
1: में
0: मोबाइल शरारते कर रहा है।
1: शरारते कर देता है। तो
0: हाँ
1: बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं। तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट होती है।
1: झुंझलाहट होती है कि अरे यार खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं। तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने के समय
0: हाँ
1: मोबाइल
0: बिल्कुल
1: चलाइए।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है,
1: बिल्कुल
0: यानी दाल भात में मूसर्जन।
1: मूसर्जन। और एक साथी लिखती है कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है। वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है।
0: सही
1: साथ
0: बात
1: रहने
0: है।
1: वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है, उन्होंने कहा है। जी
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी। अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना, फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत
1: क्या
0: अच्छी बात कही इन्होंने।
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहां तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती है। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन

0: जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़ कर रखता था,
1: एक डोर में बांधे रहता
0: बांधे रहता था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी।
1: था।
0: लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहां डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे,
1: हाँ,
0: पूरे टाइम
1: लेकिन
0: नहीं लगा रहेगा अपने
1: ये
0: साथ।
1: समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन ले एक।
0: गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए, तो मोबाइल में की
1: तालमेल
0: भूमिका को
1: कैसे
0: जरा हाँ
1: जी
0: थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल।
1: बिल्कुल
0: एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष तो पुरुष, बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ ये बात तो होती है ना कि अब सोते
1: बिल्कुल
0: समय भी कोई ये देख रहा है, तो
1: देख रहा
0: जबकि
1: है।
0: सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूर बरतना,
1: मुझे
0: दूरी
1: लगता है
0: बरतना
1: कि
0: अच्छा
1: राजन
0: रहता
1: जी,
0: है।
1: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिए, मोबाइल मेज पर रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा की मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूरी रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफी चीजों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं। आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और
1: बिल्कुल
0: हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है,
1: और
0: लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है, वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा। तो सभी को मंत्री वर्मा और

0: राजुल का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूंगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना लें तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताऊंगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते हैं, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज़

0: छोटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ।
1: जी
0: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
0: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धान्य जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
1: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धान्य जैसे हम बताते हैं। ये जो प्रोटीन है, इस ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे बताए, दो चीजें साथ में ले ले, तो ये कंप्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा,
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं, या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं।
1: वाह,
0: तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पहला अगर मैं देखूं तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है।
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल।
1: जी,
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है, ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं, भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है।
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कच्चे हैं तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है कई बार, ये मिथ है या सच है कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
0: वो कौन सी है?
1: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते

0: कि कितना खाना है, बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
1: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती है जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज़ परहेज नहीं करनी है।
1: प्रोटीन ले सकते हैं,
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और ज़रूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना ज़रूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा।
1: जी जी
0: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं
1: एक
0: कि
1: मिथ होता है कि
0: बीज
1: बैंगन
0: वाले,
1: बंद कर दीजिए,
0: हाँ बीज
1: टमाटर
0: वाली
1: बंद कर
0: चीजें,
1: दीजिए।
0: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
0: ये वादा रहा इस मूवी से, ये वादा रहा
1: टाइटल
0: टाइटल
1: सॉन्ग
0: सॉन्ग।
1: सुनना है आपको?
0: जी बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
0: राइट।
1: हम सुनवा रहे हैं

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो,
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
0: पचा
1: इतना
0: नहीं
1: सारा
0: पाएगा।
1: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो वो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं

0: को बोलो कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो
1: ओ
0: जाएगा।
1: हो, हैवी हो जाएगा।
0: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो शक पॉसिबल भी है और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा। शरीर को बचाने के लिए समय मिल जाता है और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
1: जी। तो इसका मतलब ये है, प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके, विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
0: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
1: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
0: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
1: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।
0: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी जरूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है, तो
1: जी
0: जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है,
1: जी
0: अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेज जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है।
1: सीरम क्रिएटिनिन।
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है। ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है।

0: ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज़्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
1: जैसे
0: जैसे
1: दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
0: बिल्कुल दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी, भैया बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार
0: प्यार
1: हो
0: हो जाए।
1: जाए, बहुत ही
0: यस
1: अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वह है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको

0: शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन्स है वो है फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोलबल वाइटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटरबल सोलबल वाइटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोलबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
1: अच्छा
0: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोलबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोलबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
1: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
0: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब
1: या धूप में निकले।
0: अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं, पैटर्न में एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
1: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या-क्या हैं?
0: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है
1: जैसे
0: जैसे फल हो गए जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीजन है प्रोटीन खाने का वो रीजन नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज्यादा विटामिन होते हैं, जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट
1: जैसे
0: होता है।
1: ऑरेंज है।
0: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है, मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियां लूं तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये ना पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सब सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स आप ग्रहण
1: कर
0: कर
1: रहे
0: रहे
1: हैं, बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या धुंधलापन
1: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी जी
1: राइट,

0: पे। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
1: जी
0: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है,
1: जी
0: ये मेजर सोर्सेस है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं बट ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है।
1: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
0: जी, और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है।
1: जी
0: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
1: नींबू
0: हैं,
1: है।
0: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी 1% ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची,
1: ओहो,
0: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी
1: हरी
0: होता है,
1: मिर्च।
0: हरी मिर्च में। तो ये चीजें हैं हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
1: जी। और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
0: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए,
1: अच्छा
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीज़न से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज़ नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज़ रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्जी रोटेशन पे रखो, जितना आप उसे अलग अलग चीज़ें खाएंगे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
0: इश्क भुलावा, हंसी तो फंसी, पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज। तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो। ठीक है, कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है,
0: कठोर
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तीसरा है आपकी सब्जियाँ,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है।
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, पर ये जरूरी है, इसमें विटामिन भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ। और इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है पानी, जिसे हम ज़्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज़्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीज़ें, पांचों चीज़ें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न ज़माना है, पास्ताज एंड पिज़्ज़ास का ज़माना है, तो वो पास्ताज एंड पिज़्ज़ास भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज़ के पीछे।
0: कितनी हमें आवश्यक

0: का है।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे, तो ये हमें ज़्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज़्यादा ज़रूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज़, उनके लिए ये चीज़ बहुत काम करती है, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत काम की है जिनको वज़न कम करना है,
0: जी
1: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत ज़रूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी ज़रूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ
0: अच्छा।
1: नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू वो एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीज़ें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजोल्व हो गई है, तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज़्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए, तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
1: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं, अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की ज़रूरत है, पर अगर आप ठीक हो
0: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है।
1: तो मिलना ज़रूरी है, एक बार मिलना ज़रूरी है, आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफ़ी बार हम चीज़ें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फ़ायदा कर रहा है, या ये चीज़ें हम अवॉइड कर दे रहे, जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
0: या
1: उसमें
0: फिर वो बिना मलाई का दूध है।
1: एग्जैक्टली अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, तो हर चीज़ के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत ज़रूरी है, एक बार आप वो समझ लें फिर आप खुद से चीज़ें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है, वो इंटरनेट से पढ़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज़ का नॉलेज है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है।
0: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
1: बिल्कुल नहीं,
0: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है।
1: उनकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीज़ें चेंज हो जाती है,
0: बिल्कुल
1: आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है, वो एक चीज़ पे नहीं मापी जा सकती, और अगर सिंपल चीज़ें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा, तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज़ खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज़ खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे, रोज़ दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इम्पोर्टेंस होता
0: जैसे
1: है,
0: गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
1: आम गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं, कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डायटिशियन की सलाह लगेगी ही,
0: जी
1: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है, तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है तो वो भी खा सकते हो, तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए, ऐसे नहीं कि कोई चीज़ प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना है, उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए, और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज़ तो कम से कम रखनी है। एक से ज़्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी ज़रूरत पूरी होगी, तब तक हमारी ज़रूरत नहीं पूरी होने वाली है।
0: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की ज़रूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीज़ें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी ज़रूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते, आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो, बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीजें चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व तो बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरे केन से बोल रहे हैं। शाम की 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज का अंक आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा के साथ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस बदलते मौसम और प्रचंड गर्मी में, बढ़ते तापमान में आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सभी उपाय कर रहे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित रह रहे होंगे, और हीट वेव से बचने के लिए सभी गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और जानते हैं क्या है विशेष आज के दिन, यानी 18 मई को। दोस्तों, आज है दो खास दिवस। सबसे पहले विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, और साथ ही आज है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यों मनाया जाता है 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, और इसे सबसे पहले कब मनाया गया था, और वर्ष 2026 की थीम क्या है। दोस्तों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस HIV एड्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में बहुत खास दिन है। सही जानकारी, समय पर जांच और वैज्ञानिक प्रयासों के जरिए ही भविष्य में HIV मुक्त दुनिया का सपना पूरा किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे सबसे पहले किसने मनाया था? तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों, प्रतिवर्ष 18 मई को पूरी दुनिया में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ एक हेल्थ डे नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की उम्मीद से जुड़ा है जो HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दुनिया भर में आज भी HIV संक्रमण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि इलाज और दवाओं में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अब तक इसकी पूरी तरह से असरदार वैक्सीन नहीं बन पाई है। यही वजह है कि इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस मौके पर वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के प्रयासों को सम्मान दिया जाता है, और लोगों को HIV के प्रति जागरूक करने का काम किया जाता है। साल 2026 में भी ये दिन यही संदेश दे रहा है कि जागरूकता, रिसर्च और मिलकर किए गए प्रयास ही HIV मुक्त भविष्य की उम्मीद बन सकते हैं। दोस्तों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस को प्रतिवर्ष 18 मई को मनाने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल साल 1997 में इसी दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बड़ा भाषण दिया था। उन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स से HIV वैक्सीन बनाने के लिए तेजी से काम करने की अपील की थी। उनका मानना था कि एड्स जैसी बीमारी को रोकने के लिए सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि वैक्सीन सबसे जरूरी हथियार साबित हो सकती है। इसी भाषण के बाद 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इस खास दिन को पहली बार साल 1998 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और HIV वैक्सीन रिसर्च से जुड़ी संस्थाओं ने मिलकर की थी। इस दिन का उद्देश्य उन वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और वॉलंटियर्स का सम्मान करना था जो HIV वैक्सीन की खोज में लगातार मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे ये दिन पूरी दुनिया में जागरूकता अभियान का हिस्सा बन गया, और अब कई देशों में इसे अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग HIV और एड्स को एक ही चीज समझते हैं, यानी उन्हें HIV और एड्स के बीच का अंतर नहीं पता है, जबकि दोनों अलग है। दोस्तों, HIV एक वायरस है जो शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। अगर समय रहते इलाज न मिले तो यही संक्रमण आगे चलकर एड्स का रूप ले सकता है। अच्छी बात यह है कि आज मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सही इलाज और दवाओं की मदद से HIV संक्रमित व्यक्ति भी लंबे समय तक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन संक्रमण को पूरी तरह से रोकने के लिए वैक्सीन की जरूरत अभी भी बनी हुई है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2026 की थीम क्या है। साल 2026 में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2026 की थीम है इनोवेटिव टुगेदर, बिल्डिंग एन HIV
फ्री फ्यूचर यानी मिलकर नई सोच और नई तकनीकों के जरिए एचआईवी मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में बात पर जोर देती है कि सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सरकारों, हेल्थ संस्थाओं और आम लोगों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इसके प्रति आप सभी को जागरूक होना चाहिए और अपने आसपास रह रहे सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, जितना हो सके जानकारी को बांटें, फैलाएं और इस दिवस के महत्व को भी समझें। तो दोस्तों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर चर्चा बस यहीं तक। सुनते रहिए आकाशवाणी उबरा से प्रसारित आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: युववाणी कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ये वार्ता। विषय है युवा दृष्टि नई सोच, संग्रहालयों से जुड़ती भविष्य की पीढ़ी। वार्ताकार है अंकिता जायसवाल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के युवाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता जायसवाल और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे अतीत की खिड़की भी है और भविष्य का दरवाजा भी। हमारा आज का विषय है युवा दृष्टि नई सोच, संग्रहालयों से जुड़ती भविष्य की पीढ़ी। दोस्तों, संग्रहालय यानी म्यूजियम शब्द सुनते ही आपकी जहन में सबसे पहले क्या आता है? शायद लंबी खामोशी, पुराने पत्थरों की मूर्तियाँ, धूल भरी किताबें या फिर वो स्कूल की अनिवार्य ट्रिप जहां हमें जबरदस्ती ले जाया जाता था। हम में से कई लोगों ने लंबे समय तक यही माना कि संग्रहालय केवल इतिहास के शौकीनों या शोधकर्ताओं के लिए है। लेकिन रुकिए, क्या आपने गौर किया है कि पिछले वर्षों में यह तस्वीर बदल रही है? आज का युवा जो हर चीज में लॉजिक और एक्सपीरियंस ढूंढता है, वह संग्रहालयों को नए नजरिए से देख रहा है। आज संग्रहालय केवल स्टोर रूम नहीं रहे बल्कि वे स्टोरी टेलिंग हब बन गए हैं। एक युवा जब वहां जाता है तो वह केवल पुरानी चीजें नहीं देखता बल्कि वह उन कहानियों को महसूस करता है जिनसे आज का समाज बना है। अब सवाल यह है कि यह बदलाव आया कैसे? इसका जवाब है तकनीकी और नई सोच। दोस्तों, आज की पीढ़ी डिजिटल नेटिव है। संग्रहालयों ने इस बात को बखूबी समझा है। आज भारत और दुनिया भर के संग्रहालय स्मार्ट हो रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप एक गैलरी में खड़े हैं और अपने स्मार्टफोन से एक QR कोड स्कैन करते हैं और अचानक वह 500 साल पुरानी पेंटिंग आपके फोन पर बोलने लगती है। या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR के जरिए आप मौर्य काल के बीचों बीच खड़े होकर राजा अशोक को देख पा रहे हैं। प्रिय साथियों, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में युवाओं की सोच भी पहले से अधिक आधुनिक और गतिशील हो चुकी है। लेकिन इस तेज रफ्तार जीवन में एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या हम अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत से जुड़े हुए हैं? यही वह स्थान है जहां संग्रहालय हमारी मदद करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं होते बल्कि वे हमारी सभ्यता की जीवित कहानी होते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार समाज और संस्कृति का निर्माण किया है। दोस्तों, संग्रहालय किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक माने जाते हैं। यह इतिहास बोलता है, कला मुस्कुराती है और सभ्यता अपनी कहानी सुनाती है। जब कोई युवा संग्रहालय में प्रवेश करता है तो वहाँ रखी हर वस्तु एक कहानी कहती है, संघर्ष की, विज्ञान की, संस्कृत की और मानव विकास की। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में संग्रहालयों का महत्व और भी बढ़ जाता है।

0: है। हमारे देश में प्राचीन सभ्यता, स्वतंत्रता संग्राम, लोक संस्कृत, विज्ञान, कला और साहित्य से जुड़े हजारों संग्रहालय मौजूद हैं। ये संग्रहालय न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं बल्कि युवाओं के भीतर ज्ञान और जिज्ञासा भी पैदा करते हैं। नई पीढ़ी और बदलती सोच। पहले के समय में यह माना जाता था कि संग्रहालय केवल शोधकर्ताओं या इतिहासकारों के लिए होते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस सोच को बदल रही है। आज का युवा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहता, वह अनुभव से सीखता है। साथियों, संग्रहालयों से जुड़ती भविष्य की पीढ़ी वर्तमान समय में संग्रहालय यानी म्यूजियम अब केवल धूल भरी वस्तुओं को रखने के स्थान नहीं रह गए हैं, बल्कि वे ज्ञान, नवाचार और संस्कृति के जीवन केंद्र बन रहे हैं। युवा दृष्टि नई सोच के साथ संग्रहालय भविष्य की पीढ़ी से जुड़ने के लिए एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। युवाओं के लिए संग्रहालय नया दृष्टिकोण, इंटरैक्टिव अनुभव। संग्रहालय अब डिजिटल स्क्रीन, टच स्क्रीन, कियोस्क और ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियों का उपयोग कर रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी यानी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR के जरिए युवा अब इतिहास का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में कश्मीर पश्मीना की बुनाई को 3D में देखना, जैसे कि राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में कश्मीरी पश्मीना की बुनाई को 3D में देखना। दोस्तों, भावी पीढ़ी को जोड़ने के प्रमुख बिंदु संस्कृत और विरासत से जुड़ाव के लिए PM मोदी द्वारा रेखांकित संग्रहालय भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं और युवाओं को हमारे अतीत से जोड़ते हैं। शैक्षिक केंद्र, ये स्थान छात्रों के लिए सीखने का एक अनूठा मंच है जो व्यवहारिक ज्ञान और इतिहास की गहरी समझ प्रदान करते हैं। युगे युगीन भारत संग्रहालय नई दिल्ली में बन रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय 5000 वर्षों के इतिहास को 8 थीम्स के माध्यम से प्रदर्शित करेगा, जो भविष्य की पीढ़ी के लिए एक प्रमुख आकर्षण होगा। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की पहली गैलरी के वर्ष 2026 के अंत तक खुलने की संभावना है। यह संग्रहालय वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थान लेते हुए विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, यह संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री संग्रहालय डिजिटलीकरण और भारत की संस्कृति मैपिंग जैसी पहलों को पूरक रूप से सशक्त करेगा। इसकी थीम भारतीय सभ्यता के 5000 वर्षों की निरंतर यात्रा पर आधारित है, जो भारत की सनातन और शाश्वत प्रकृति को दर्शाता है। संग्रहालय युवाओं को अपनी संस्कृति और पहचान से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है। आज वैश्वीकरण के दौर में विदेशी संस्कृति का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। युवा आधुनिकता को अपनाने में इतने व्यस्त होते जा रहे हैं कि कभी कभी अपनी परंपराओं और मूल्यों को भूलने लगते हैं। ऐसे समय में संग्रहालय उन्हें अपनी सभ्यता की महानता का अनुभव कराते हैं। वे बताते हैं कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि हजारों वर्षों की संस्कृति और ज्ञान का केंद्र है। जब युवा अपनी विरासत को समझते हैं, तब उनमें अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान और गर्व की भावना विकसित होती है। दोस्तों, संग्रहालय केवल अतीत की याद दिलाने तक सीमित नहीं है बल्कि वे भविष्य निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, आज के डिजिटल युग में संग्रहालय भी आधुनिक तकनीक के साथ बदल रहे हैं। पहले संग्रहालयों को केवल शांत और गंभीर स्थान माना जाता था, लेकिन अब वहाँ डिजिटल स्क्रीन, 3D मॉडल, वर्चुअल रियलिटी और इंटरैक्ट प्रदर्शन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। युवाओं के लिए संग्रहालय प्रेरणा के केंद्र भी हैं। वहाँ महान राजाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और समाज सुधारकों से जुड़ी वस्तुएं और जानकारी उपलब्ध होती हैं। जब युवा उनके संघर्ष और उपलब्धियों को देखते हैं, तो उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वे समझते हैं कि महानता कठिन परिश्रम, त्याग और संकल्प से प्राप्त होती है। इस प्रकार संग्रहालय चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संग्रहालयों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वे युवाओं में रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। कला संग्रहालयों में चित्रकला, मूर्तिकला और हस्तशिल्प को देखकर युवाओं की कल्पना शक्ति विकसित होती है। वे नई कलाओं को सीखने और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित होते हैं। कई युवा संग्रहालयों से प्रेरणा लेकर कलाकार, लेखक, इतिहासकार बनने का सपना देखते हैं। इस प्रकार संग्रहालय केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि युवाओं के कैरियर और व्यक्तिगत विकास में भी सहायक होते हैं। भविष्य की पीढ़ी को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने में संग्रहालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब युवा अपने इतिहास और समाज को समझते हैं, तब वे अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक संवेदनशील बनते हैं। वे महसूस करते हैं कि उन्हें अपनी विरासत और संस्कृति को सुरक्षित रखना है। दोस्तों, भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में संग्रहालय राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का कार्य भी करते हैं। यहाँ विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति, वेशभूषा और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। जब युवा इन विविधताओं को देखते हैं, तो उनमें एकता में अनेकता की भावना मजबूत होती है। वे समझते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद भी हम सभी भारतीय हैं। यह भावना देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज आवश्यकता है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों को संग्रहालयों के प्रति अधिक जागरूक किया जाए। शिक्षा केवल परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि विद्यार्थियों को नियमित रूप से संग्रहालयों का भ्रमण कराया जाए, तो उनकी शिक्षा अधिक व्यवहारिक और रोचक बन सकती है। शिक्षक भी संग्रहालयों को शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बनाकर छात्रों में सीखने की रुचि बढ़ा सकते हैं। सरकार और समाज को भी संग्रहालयों को आधुनिक और आकर्षक बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी संग्रहालयों को युवाओं तक पहुंचाया जा सकता है। आज का युवा नई तकनीकी से जुड़ना पसंद करता है, इसलिए संग्रहालयों को भी समय के अनुसार बदलना आवश्यक है। संग्रहालयों से जुड़कर युवा अपनी जड़ों को पहचानते हैं और आधुनिकता के साथ संतुलन बनाना सीखते हैं। यह संतुलन उन्हें सच्चे अर्थों में जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। अंततः कहा जा सकता है कि संग्रहालय भविष्य की पीढ़ी को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। वे युवाओं को इतिहास, संस्कृति और मानवता से जोड़ते हैं। नई सोच और युवा दृष्टि के साथ जब युवा संग्रहालयों से जुड़ेंगे, तब वे केवल अपने अतीत को नहीं समझेंगे बल्कि एक बेहतर भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संग्रहालयों से जुड़ी युवा पीढ़ी ही अपने देश की संस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक भारत का निर्माण कर सकती है। यही वह मार्ग है जो युवाओं को ज्ञान, प्रेरणा और जिम्मेदारी की ओर ले जाता है, राष्ट्र को उज्जवल भविष्य प्रदान करता है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे अंकिता जायसवाल से। ये वार्ता विषय था युवा दृष्टि, नई सोच, संग्रहालयों से जुड़ती भविष्य की पीढ़ी। प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।
2: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों आइए अब चलते हैं अपनी विशेष चर्चा की ओर जो कि है आकाशवाणी एट 90 सफर 90 वर्ष का। और इस क्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आकाशवाणी खेलों के सजीव प्रसारण का माध्यम बना। दोस्तों भारत में खेलों के सजीव प्रसारण में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भूमिका आकाशवाणी ने निभाया है, विशेषकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में। यह देश के दूर दराज के कोनों तक हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रत्यक्ष आंखों देखा हाल यानी लाइव कमेंट्री पहुंचाकर श्रोताओं को रेडियो के माध्यम से खेल का रोमांचित अनुभव प्रदान करता है। आकाशवाणी भारत का प्रमुख सार्वजनिक टेरेस्ट्रियल रेडियो ब्रॉडकास्टर है जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, विशेषकर जहां टीवी इंटरनेट की पहुंच नहीं है, रेडियो के जरिए सीधे प्रसारण सुनिश्चित करता है। यह प्रमुख खेल आयोजनों का हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में सजीव वर्णन प्रदान करता है जिससे खेल सभी की समझ में आ सके। आकाशवाणी अपने अनुभवी कमेंट्रेटरों के एक पैनल के द्वारा खेल की बारीकियों, खिलाड़ियों के प्रदर्शन और रणनीतियों का सटीक विवरण देते हैं। यह न केवल क्रिकेट बल्कि हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन जैसे विभिन्न खेलों को कवर करता है और अब FM व डिजिटल रेडियो के माध्यम से इसका प्रसारण कर रहा है। दशकों से आकाशवाणी ने भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए एक विश्वसनीय साथी की भूमिका निभाई है जो खेल के रोमांचित क्षणों को शब्दों के माध्यम से जीवंत करता है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: दोस्तों अब दीजिए अनुमति अपने रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा को कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार बहनों, आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी और मैं हूं सुधा। बहनों, आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे विषय जो हमारे जीवन, स्वास्थ्य और समाज से सीधा जुड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। बहनों, आप सब कैसी हैं? हर व्यक्ति बहनों आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया है कि अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना भूलता ही जा रहा है। सुबह से शाम तक काम की चिंता, मोबाइल और तनाव भरी जिंदगी, ऐसी दिनचर्या हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित कर रही है। मैंने याद रखिए, स्वास्थ्य शरीर ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी परिवार और समाज की जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह से निभाई जा सकेंगी। आज की व्यस्त दिनचर्या में लोग स्वास्थ्य को सबसे आखिर में रखते हैं, यानी कि हर समय टालते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम समय पर भोजन और आराम नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य और बिगड़ता जाएगा। लगातार तनाव और काम का दबाव शरीर को और भी कमजोर बना देता है। देर रात तक जागना, पर्याप्त नींद न लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मोबाइल और स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग आंखों और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। और बहनों, संतुलित आहार और समय पर भोजन हमें ऊर्जावान बनाए रखते हैं। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय स्वयं के लिए जरूर निकालना चाहिए। काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। जिंदगी में छोटी छोटी आदतें हमें स्वस्थ रखती हैं। इसके साथ ही सुबह की सैर और ताजी हवा शरीर में नई ऊर्जा भर देती है। मैनों, हमें तनाव मुक्त रहने के लिए हंसना और खुश रहना भी जरूरी है। फास्ट फूड की जगह पौष्टिक भोजन अपनाना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपना कर हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। समय का सही प्रबंधन ही हमें तनाव और चिंता से दूर रखता है। परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देता है। यही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो जीवन की हर चुनौती आसान लगती है। बहनों, मैंने हम बात कर रहे हैं विश्व एड्स टीकाकरण दिवस की, क्योंकि प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस होता है और यह दिवस लोगों को एड्स जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। एड्स से बचाव के लिए जागरूकता और सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। समय समय पर जांच करना, सुरक्षित जीवन शैली अपनाना, भ्रांतियों से दूर रहना बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि एड्स पीड़ित व्यक्ति को प्रेम, सहयोग और सम्मान की आवश्यकता होती है, भेदभाव की नहीं। एड्स एक गंभीर बीमारी है, लेकिन जागरूकता से इससे बचाव संभव है। आइए बहनों, और जानकारी के लिए सुनते हैं भेंट वार्ता। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, जागरूकता ही बचाव है। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर राहुल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय मेडिकल सोनभद्र, और भेंट करता है साजिदा बेगम। तो आइए बहनों, सुनते हैं भेंट वार्ता।
1: वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, जिसे एड्स टीकाकरण दिवस के रूप में जाना जाता है, यह हर साल 18 मई को मनाया जाता है। यह दिन HIV के टीके के महत्व, रिसर्च को बढ़ावा देने और समाज को एड्स से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पर। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल सिंह जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: जी, धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि एचआईवी और एड्स क्या है?
2: एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। यदि इसका समय पर इलाज न हो तो यह आगे चलकर एड्स का रूप ले लेता है। एड्स कोई अलग बीमारी नहीं है बल्कि एचआईवी संक्रमण की अंतिम अवस्था है, जिसमें शरीर सामान्य संक्रमणों से भी लड़ नहीं पाता, जिसको कि हम एड्स के नाम से जानते हैं।
1: जी जी, यानी कि एचआईवी का ही बड़ा रूप एड्स से
2: जी,
1: हो जाता है।
2: अंतिम अवस्था एचआईवी इन्फेक्शन के अंतिम अवस्था को एड्स बोलते हैं।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि एचआईवी संक्रमण के लक्षण क्या है और यह कैसे फैलता है?
2: एचआईवी संक्रमण के लक्षण शुरू में आपको बुखार आएगा, थकान रहेगी, कमजोरी होगा शरीर में, वजन कम होगा
1: जी,
2: उल्टी दस्त होगा, सर दर्द करेगा और बार बार खांसी आएगा
1: जी जी।
2: इसके संक्रमित होने के लक्षण बहुत बार क्या होता है कि शुरुआती स्टेज में मरीज एचआईवी से जब इन्फेक्शन होता है उसको हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल तक कोई सिम्टम ही न पता चले।
1: अच्छा,
2: बाद में अगर आपको 1 हफ्ते से ज्यादा बुखार आ रहा है बिना किसी कारण के, आपका वजन कम हो रहा है, आपको खांसी हो रही है और डेली आपको दस्त हो रहा है बहुत दिनों से, 1 हफ्ते से ज्यादा दस्त हो रहा है, तो उसके लिए ये सब शुरुआती एचआईवी के लक्षण हैं। इसके लिए हम लोग को सरकारी अस्पताल में जाके एचआईवी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उनके सलाह अनुसार एचआईवी की जांच करानी चाहिए।
1: जी, यानी कि लक्षण यही है।
2: लक्षण यही है। उसके बाद यह कैसे फैलता है? फैलने के असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है
1: जी।
2: जो कि लोगों में इसके बारे में जानकारी है लेकिन तो कोई भी अगर संक्रमित होता है तो सब लोग हम लोग यही सोचते हैं कि इसी कारण से हुआ है।
1: यह
2: सोच बिल्कुल गलत है। ढेर सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो मरीज को बार बार खून चढ़ रहा है तो उससे भी संक्रमित व्यक्ति का अगर किसी का खून दूसरे को चढ़ गया तो उससे चढ़ सकता है। बहुत बार क्या होता है कि एचआईवी का जो विंडो पीरियड एक बोलते हैं हमको, जैसे कोई आज मरीज इन्फेक्शन हुआ एचआईवी से और उनको 1 महीने 15 दिन 45 दिन तक कोई लक्षण नहीं आएगा, न वो किसी जांच में, मतलब जो हम लोग नॉर्मली जांच कराते हैं उसमें नहीं आता है।
1: अच्छा,
2: तो उस विंडो पीरियड में हो सकता है, जैसे किसी को डोनेट करना है ब्लड और जो डोनर है हम उससे ब्लड लिए लेकिन तो वो विंडो पीरियड में था तो वो जांच में जल्दी आता नहीं है।
1: अच्छा,
2: और हम दूसरे मरीज को चढ़ा देंगे तो वो भी संक्रमित हो जाएगा
1: जी।
2: तो उससे हो सकता है, जो जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है उनका निडल किसी दूसरे को लग गया, गलती से ही लग गया
1: जी,
2: तो
1: जी।
2: उससे भी हो सकता है। कई बार क्या होते हैं माइक्रोकट्स होते हैं शरीर में हम लोग के
1: जी।
2: एक मरीज का खून दूसरे को लग गया अस्पताल में तो उससे भी हो सकता है
1: जी।
2: बहुत बार मदर से चाइल्ड को होने की संभावना रहती है
1: जी।
2: इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी एचआईवी की जांच कराना जरूरी होता है
1: जी जी। तो जैसे आपने बात की कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी जांच करवाना, तो ये किस पीरियड में, कितने महीने के बाद करानी
2: नहीं जब पता चले कि आप गर्भवती हैं तब से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जांच का। जैसे ही किसी गर्भवती, मतलब हम लोग को पता चलता है कि ये महिला गर्भवती हैं तो हम लोग उनका हेपेटाइटिस बी का, सी का, एचआईवी का, वीडीआरएल का और ढेर सारे जो और अदर कॉमन इन्फेक्शन रहते हैं उनका जांच कराते हैं। उसके लिए कोई मतलब डेट नहीं है कि नहीं फर्स्ट वीक में कराएंगे प्रेगनेंसी के या लास्ट में, जब पता चल जाएगा तभी हम लोग करा लेते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए उसके बारे में।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि गर्भवती महिलाओं को लेना चाहिए, तो 1 महीने से लेकर 9 महीने तक किसी भी महीने कर सकते हैं?
2: हाँ, कर सकते हैं लेकिन तो 9 महीने तक का वेट नहीं करना चाहिए ना हमको
1: जी,
2: तो
1: जी।
2: मतलब पहले दूसरे तीसरे महीने में तो पता ही चल जाएगा कि गर्भवती है
1: जी जी,
2: तो इसलिए जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। लेकिन कोई अगर 8वें महीने तक नहीं ले लिया है तो 9वें महीने में ले लेना चाहिए।
1: हाँ, मान लीजिए कि पता ही ना हो 8वें महीने तक,
2: तो जैसे कि अगर मान लो आप 9वें महीने में भी पता चल गया कि हमारा कोई महिला जो है वो एचआईवी से इन्फेक्टेड है
1: जी,
2: तो उसके बच्चे को ना हो, उसके लिए हम लोग प्रिकॉशंस

0: तो उससे पूरी तरह से संभव है कि बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा?
1: मतलब हाँ, बच्चा तो स्वस्थ रहेगा, रिस्क बहुत कम हो जाता है,
0: जी
1: सावधानियां बरतते हैं तो कम हो जाता है,
0: जी जी
1: पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन तो रिस्क बहुत मिनिमल हो जाएगा।
0: जी तो ये तो आपने बता दिया कि गर्भवती महिलाओं को भी कैसे उनको बचाया जा सकता है, होने वाले बच्चों को भी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे शरीर पर एड्स का क्या प्रभाव पड़ता है?
1: एड्स जो होता है हमारे, ये HIV इन्फेक्शन के लास्ट स्टेज है, जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है।
0: जी
1: ये जो वायरस है हमारे शरीर के इम्यूनिटी को कमजोर करता है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है
0: जी जी
1: उसको कम करता है। तो जैसे जैसे शरीर में नंबर ऑफ वायरस का नंबर बढ़ेगा, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो
0: जी
1: हम अगर स्टार्टिंग से जैसे किसी को पता चल जाए और वो दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं हम, जिसको कि
0: जी
1: एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं, तो
0: जी
1: वो क्या हमारे शरीर में वायरस के नंबर को ही बढ़ने नहीं देगा। तो
0: जी
1: इसलिए हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अचानक से नहीं कम होगी, धीरे धीरे कम होगी। और अगर हम सही, आज के ज़माने में जो दवाइयाँ हैं बहुत कारगर दवाइयाँ हैं, तो
0: जी
1: अगर हम सही से दवाई खाएंगे तो हो सकता है कि HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति एड्स के स्टेज तक पहुँचे ही नहीं। आज के
0: जी
1: डेट में इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं। तो
0: जी
1: और जो एड्स होता है, एड्स HIV का लास्ट स्टेज है, उसमें क्या होता है, जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर
0: जी जी
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो जो नॉर्मल, जैसे हम लोग को सर्दी जुकाम होता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो नॉर्मल इंसान में उतना असर नहीं करेगा जितना कि HIV वाले पेशेंट्स में करेगा।
0: तो उनमें ज्यादा
1: उनमें
0: होता
1: बार
0: है
1: बार इन्फेक्शन होगा,
0: जी
1: जो नॉर्मल लोगों में जैसे TB का हम लोग को खतरा है,
0: जी
1: HIV और इन्फ्लुएंजा का खतरा है, लेकिन हम लोग में वो खतरा कम रहेगा। लेकिन तो
0: जी
1: जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, उनको अगर हल्का सा भी इन्फेक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होगा। इसलिए जितने भी HIV के इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, हम लोग उनमें रेगुलर TB की जांच कराते हैं और
0: जी
1: सारी जांचें कराते रहते हैं,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: उनकी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके वजह से उनमें बार बार बीमारियां होती हैं। अगर नॉर्मल
0: जी
1: किसी को डायरिया होता है तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में सही
0: जी
1: हो
0: जी
1: जाता है, लेकिन एड्स वाले मरीजों में आप देखोगे बुखार महीनों महीनों तक चलता है।
0: जी
1: वो एज सच HIV की वजह से नहीं आता, वो सारे जो चीज़ हैं या एड्स
0: जी
1: के,
0: जी
1: जो अदर वायरस
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: शरीर की इम्यूनिटी कम होने की वजह से, जो बार बार दूसरे लोगों से इन्फेक्शन होता है, दूसरे वायरस से या बैक्टीरिया से होता है, उसके वजह से मरीज बार बार बीमार रहता है। और ऐसे मरीजों में कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, जो
0: जी
1: नॉर्मल लोग हैं
0: जी
1: उनसे, और जो HIV पेशेंट्स हैं उनमें, HIV वालों में कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है, प्लस दिमागी बुखार का खतरा, TB का खतरा,
0: जी
1: पेशाब का इन्फेक्शन
0: जी
1: और ये सब खतरा ज़्यादा रहता है
0: जी
1: उनमें।
0: तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि HIV संक्रमण से जो पीड़ित व्यक्ति रहते हैं
1: जी
0: उनको बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है,
1: जी
0: उनकी इम्यूनिटी
1: जो
0: कमजोर हो जाती
1: जी
0: है।
1: मेन कारण है शरीर की इम्यूनिटी। जब हमारे शरीर
0: जी
1: की इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो कोई भी जो नॉर्मल वायरस है, जो
0: जी जी
1: हमको पहले असर नहीं करता था, अब वो ज्यादा असर करेगा। जब
0: जी
1: हम कमजोर होंगे तो हमको ज्यादा असर करेगा वो।
0: जी जी तो डॉक्टर साहब, तो मौसम में भी जैसे बदलाव होता है
1: जी
0: तो उसका भी उनके ऊपर
1: जी
0: ज्यादा असर
1: उनके
0: पड़ता
1: ऊपर जो
0: होगा?
1: HIV पेशेंट रहेंगे, नॉर्मल लोग से ज़्यादा उनके मौसम का उनके पे
0: जी
1: ज़्यादा असर पड़ेगा। सर्दी खांसी का मौसम आ गया, सर्दी का मौसम आ गया, तो जो नॉर्मल लोग को इन्फेक्शन होगा वो नहीं होगा। आप ऐसे सामान्य समझिए जैसे कोविड का था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: कोविड आप देखे होंगे कि सबसे पहले बोला जाता था कि जो लोग ज़्यादा एज के हैं उनको इफेक्ट करता था,
0: जी
1: जो डायबिटीज के मरीज थे उनको था, जो
0: जी
1: शुगर
0: जी
1: के मरीज थे उनको था, या जो सांस वाले मरीज, तो
0: जी
1: वही सेम चीज़ें HIV वाले मरीज पे भी लागू होती हैं।
0: जी तो ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो वो इसकी जांच कैसे कराए? सबसे पहले तो आदमी वहीं पे
1: जी
0: बहुत ज्यादा
1: अगर
0: दुखी होता
1: किसी को
0: है।
1: बहुत दिन से बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है,
0: जी
1: तो उसको इसकी जांच कराना चाहिए। HIV की जांच साधारण रक्त के द्वारा की जाती है, सरकारी अस्पतालों में और ICTC सेंटर्स पे यह जांच बिल्कुल फ्री होती है और गोपनीय तरीके से होती है। हम किसी
0: जी जी
1: पेशेंट की जानकारी किसी दूसरे को नहीं बता सकते, तो इसलिए संकोच न करें जांच कराने में, और आएं और
0: जी
1: सरकारी
0: जी
1: अस्पताल पे निःशुल्क जांच कराएं और आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
0: जी जी अक्सर लोगों को जब डर लगती है कि
1: जी
0: एड्स का ही जब नाम लेते हैं तो अक्सर लोगों का दिमाग एक ही तरफ जाता है, जबकि एड्स फैलने के बहुत सारे कारण
1: जी
0: होते
1: बहुत
0: हैं।
1: ढेर सारे कारण हो सकते हैं।
0: तो इसके अलावा एड्स से बचाव के क्या टीके भी लगवाए जा सकते हैं?
1: आज के समय में हमारे पास HIV से बचाव के लिए पूरी तरह से प्रभावी वैक्सीन नहीं है, उस पर लगातार रिसर्च चल रहा है।

0: है, इसी जागरूकता और शोध को बढ़ावा देने के लिए हम लोग हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीनेशन दिवस मनाते हैं, जिससे कि जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके, और लोगों के बीच एड्स के प्रति जागरूकता का
1: जी जी
0: प्रसार हो।
1: जी यानी कि जागरूकता हो और तभी एड्स से बचाव भी संभव हो
0: संभव
1: सकता
0: है
1: है।
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, HIV से हम सब कैसे बचे रहें, हम सब स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
0: स्वास्थ्य, हमको HIV से बचने के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, सही
1: जी
0: जानकारी रखना चाहिए, किसी मतलब गलत फहमी में नहीं रहें, किसी भी प्रकार के भ्रम या भेदभाव से बचें।
1: जी
0: HIV मरीज जो है उससे हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए,
1: जी
0: उनके साथ
1: अक्सर
0: प्राप्त
1: होता है,
0: जी,
1: बहुत ज्यादा
0: तो
1: भेदभाव होता
0: उनके
1: है।
0: साथ हम प्रॉपर खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस उनका हमको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना है,
1: जी
0: सही समय पे जांच कराएं और इलाज कराएं। HIV संक्रमित व्यक्ति एकदम सामान्य जीवन जी सकता है आज के, और सम्मानजनक
1: जी
0: तरीके से जी सकता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसका हक है ये, हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए और
1: जी और थोड़ा सा सजग रहना चाहिए।
0: सजग रहना चाहिए, एड्स से डरे नहीं, जागरूक बने,
1: जी
0: सही जानकारी, सही समय पर जांच और सही उपचार ही बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है।
1: जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा। तो डॉक्टर साहब, आज आप स्टूडियो में आए, आपसे ढेर सारी बातें हुई, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी बहनों आप सुन रही थी भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर राहुल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय मेडिकल सोनभद्र, और भेंटकर्ता थी साजिदा बेगम। तो आइए बहनों सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

मैनू, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की। संग्रहालय हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत को सजोकर रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हम संग्रहालय को देखते तो हमें अपने देश की सभ्यता, कला और महान इतिहास की झलक मिलती है। यह नई पीढ़ी को अपने अतीत से जोड़ने का सुंदर प्रयास है। बच्चों और युवाओं को संग्रहालय अवश्य ले जाना चाहिए ताकि वे अपने देश की संस्कृति और गौरव को बेहतर ढंग से समझ सकें। यहाँ हमें प्राचीन वस्तुएं, कला और ऐतिहासिक जानकारी देखने को मिलती है। संग्रहालय हमारी सभ्यता और परंपराओं की पहचान है। हमें समय समय पर संग्रहालयों का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। यह दिवस सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का संदेश भी देता है। मैनो, चर्चा और करेंगे, उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

मानो भारत में बच्चों की सहायता और सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर मौजूद है 1098। यह एक निशुल्क आपातकालीन सेवा है जहां किसी भी बच्चे से जुड़ी समस्या जैसे बाल श्रम, बाल विवाह, हिंसा, शोषण, खोए हुए व्यक्तियों बच्चे की सहायता की जरूरत के लिए मदद ली जा सकती है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बच्चों की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी।

महिलाएं भी अपना सुन रही थी कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी के हम ओबरा किन से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में आज लखनऊ में भयल कैबिनेट के बैठकी में लखनऊ मेट्रो के विस्तार के साथ ही 12 गो महत्वपूर्ण प्रस्तावन के मंजूरी दिल गई हो। एगो रिपोर्ट।
1: आज हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चार बाग से वसंत कुंज परियोजना के लिए MOU को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा मेट्रो रेल कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। बैठक में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, शिक्षण ब्लॉक तथा नए OPD ब्लॉक के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एगो निजी मीडिया संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल भेले। एह मौका पर वहां के कहने की आज उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करौले में सफल भेल हो। प्रदेश में मजबूत नेटवर्क आधार तैयार कैल गेल बा और आज रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में UP नया पहचान बनौले बा।
2: देश के अंदर अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप 2 राज्यों को चयन करना होगा, उसमें से यूपी एक होगा। एक्सप्रेसवे देश के अंदर जितने भी बन रहे हैं, उन एक्सप्रेसवे में 60% एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर बने हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की।
0: स्वीडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित कैलस। ए मौका पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी कहने कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलल खाली उनकरे सम्मान नहीं बा, बल्कि 140 करोड़ भारतीयन का सम्मान हो।
3: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: स्वीडन में मिलल सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबले मिलल 31वां वैश्विक सम्मान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीना के 31 तारीख के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपन विचार साझा करी हैं। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम को 134वीं कड़ी हुई। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर इस कार्यक्रम बदे अपन विचार और सुझाव भेज सकेल हैं। प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला के ईसानगर थाना क्षेत्र में आज सवेरे एगो ट्रक आ एगो वैन के टक्कर में 10 जने का मौत हो गई। ये दुर्घटना जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर लंबे पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के लगे भयल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सड़क दुर्घटना में भयल जान माल के हान पर दुख जतौले हमें। प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हर मृतक के परिजन के 2 लाख रुपया आघाही लोगिन के 50,000 रुपया का अनुग्रह राशि दिहले को घोषणा कैले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सज्जो मृतकन के परिजनन बदे 4,000,000 रुपया का मुआवजा दिहले का घोषणा कैले हमें। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज वाराणसी में कहने कि देश में पेट्रोल और गैस का कोनो कमी नहीं बा। केंद्र सरकार इस समय के परिस्थिति के देखत हर संभव कदम उठा रही हो। वाराणसी के जिला विकास समन्वय आ अनुश्रवण समिति दिशा के बैठकी के अध्यक्षता के बादे पत्रकार लोगिन से बतियावत श्री पुरी देशवासियन के ईंधन के उपलब्धता बदे फिर से भरोसा दियो ने। दिशा के बैठकी के दौरान वहां के वाराणसी के कई गो विभागन का बिंदुवार समीक्षा करत अधिकारियन के योजनन के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश देने।
4: उसका एक स्टेटस रिपोर्ट दिया। ये स्टेटस रिपोर्ट जो है 120 पेज की है, जिसमें सारी योजनाएं में इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, जहां कुछ कमी है उस पर चर्चा हुई।
0: मौसम विभाग अगला 4 दिन के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस का, वहीं न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक के क्रमिक बढ़ोतरी का संभावना जतौले हो। विभाग प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी इलाकन में बिहने से लेके 21 मई ले दिन के समय कुछ जगहिन पर तेज घाम चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर देगा। इस बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के साथ ही एकरे लगे के करीब सज्जो जिलन में आज दिन में तेज घाम, भीषण गर्मी आ लू से जनजीवन प्रभावित रहा। समाचार पूरा भेल। नमस्कार।
5: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी की ओबरा केन से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचम के राम राम।
1: भोला भैया राम राम हो।
0: राम राम बुलावा बहन।
1: और बताएं का हाल चाल बा? बड़े दिन के बाद देखा पंचेती में तुसे भेंट मुलाकात होत बा।
0: बिल्कुल
1: देखा थे कि घामे घामे चल आवत रहला लेकिन कपारे पे गमछा नहीं रहल तो।
0: अरे आजकल देहो करी आगे बुलावा बहन।
1: हाँ
0: जवन धूप में जवन बाकी लगा था।
1: हाँ
0: अब ऐसे समझ जाए कि यही से तो सिख जवन मिलल हम लोग बैठकी के माध्यम से कि भर बहिया बुसट पहना।
1: हाँ एक बात बिल्कुल सही कहला है। और जोन भर महिया बुसेट के बात आप करत हुए ना ये देखा सब पर लागू होत बा। कहें कि सब कहला कि गर्मी है छोट कपड़ा पहना कम वस्त्र शरीर पर रहे तो हवा लगी लेकिन एक बिल्कुल उल्टा होला। अगर अधिक वस्त्र दिन में अगर धूप से बचे के बाद लू बयार से बचे के बाद तो भर बाहिन के बुसेट चाहे आदमी पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो अपन ढक तोप के देह रखी है तबे बच पाई है।
0: बहुत पंच भैया लोग तो बहुत अनुभवी हैं करलन का कि जोन बाकी दो तीन शर्ट पहन ली है
1: नहीं
0: वही के ऊपर जोन बाकी कोटो पहन ले तो कहे के ऐसे कहे भैया तो पसीना होत रहा बल्कि ठीक बा
1: लू न लगे
0: लेकिन जोन बाकी अगर ऐसे हवा लग जाए तो लू लग जाए बार बार प्यास लगे लगे और कब बुखार लग जाए अगर कोई ठिकान नहीं।
1: बिल्कुल भैया। और एक बात और हम कहल चाहे गर्मी इस मौसम में जैसे दऊ अपन रंग रूप बदलत हम कबो देखा एकदम बादर बादर हो जात बा कबो एकदम तेज धूप हो जात बा तो ऐसे में देखा हम लोगन के बच बचे के रहे के जरूरत बा। कहे की देखा अगर हम लोगन बच बचा के न रह जाना तो देखा ये धूप बयार जो आप कहत हमें लू लगबे करी साथ में कई तरीका के बीमारी आजकल इस समय चलत बा डेंगू होगल मलेरिया होगल तरीका तरीका के बीमारी ये सब से भी हम लोगन ग्रसित हो सकीला। और साथ में जैसे कि अभी गर्मी के बाद लू का बात कहनी है हम तो देखा उम्मीद देखा सर हमेशा ढक के अपन चले हमेशा एक गमछा सर पे जरूर होए के चाहिए भर पेट पानी पी के चले।
0: और अगर मिल जाए तो पन्ना रोज खाए
1: एकदम आम का पन्ना पिए अपन देखे बेल का शरबत पिए ये सब पेट में ठंडा प्रदान कराला।
0: और अगर लू लग जाए लगे के तो नहीं चाहिए इतना उपाय की लग बात लेकिन लग जाए तो समझ जाए जना में जौ चाहे चना बुआइल हो ओमे के ढेला लेकर के भिगो करके नाखून में
1: अच्छा
0: और नाभी में और माथे पर अगर लगा ली है
1: घरेलू
0: तो एकदम बिल्कुल जोन बाकी ठीक हो जाए ये प्रयोग कई चीज है।
1: बहुत बढ़िया चीज बतौला भैया तो आजमाई
0: तो ऐसे जोन बाकी ये और बाकी पन्ना वाला तो काम चलते है
1: बिल्कुल।
0: और जौ अगर मिल जाए तो ओकर भी लेप लग जाए तो ऐसे स्थिति में जौ के सत्तू और चना जौ सत्तू के मिला करके चना मिला करके सत्तू बना ली है तो एक एक खा करके भी और जोन बाकी लोग पीबो करला।
1: हाँ
0: तो एक ऐसे जोन बाकी लोग लगे के असर तनिक
1: बतावत हम तरीका ये देखा पेट में ठंडा प्रदान करला। और देखा है जैसे रह रह के जोन प्यास लगला सबके देखा हम लोगन तो है किसान इन बहन किसान भैया तो देखा अब घरे से भरा तो निकलला हम लोगन का मजबूरी है बा काहे अगर न निकले तो कोनो काम नहीं हुई।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: और देखा ऐसे में हम लोगन के ही खुद अपन स्वास्थ्य के देखभाल करे के बा
0: और बेल के अनोखा नुकसान बा
1: यही तरीका से जैसे आप बतावत हम जौ का बेल का ये सब का हम लोगन अगर पेय पदार्थ बना के पियल जाए तो हम लोगों के पेट में ठंडा ही बनल रही। साथ में अगर कहीं घर से बाहर निकलत भी है तो एक बोतल पानी जरूर अवश्य लेके निकली। कहे कि अगर एक बोतल पानी अगर हम लोगों के पास रही ना भैया तो देखा कहीं हो अगर प्यास लगत बा तो हम लोग बैठ के छहा के पी सकेला जाए।
0: और गुलाबो बहन देखा आज 18 मई
1: है
0: खास दिवस है।
1: बिल्कुल भैया आप जो खास दिवस का बात करत हुए तो आज के दिन समझ लो कि राष्ट्रीय HIV जोन वैक्सीन जागरूकता दिवस आज के दिन मनावल जात बा। और देखा HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 18 मई 1997 के अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के जी द्वारा मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में भाषण देलन इनके मनावे खातिर
0: खोज करे के चाहिए।
1: और कहलन कि अगला 10 वर्ष में HIV का रोकथाम वाला वैक्सीन बने के चाहिए। और देखा वही दिन से ओकरे याद में ई दिवस के मनावल जाए लगल।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो निश्चित रूप से कोई शुरुआत होला तो यादगार रहा।

0: है,
1: बिल्कुल
0: ताकि यही से जौन बाकी के याद कल जाला, या उस तरह तरह के जौन बाकी ऐसे बचे के खातिर और का कुछ हमें नियंत्रण हो, ये सब बात बत
1: बिल्कुल
0: कहे के माध्यम से भी हम लोग सुनल जाए।
1: बिल्कुल भैया। और देखा यह बा नहीं, जैसे आप कहत हुआ कि ई दिवस मनावे के पीछे के उद्देश्य भी बा,
0: अच्छा,
1: समझ लो कि वैक्सीन रिसर्च के बढ़ावा देवल है, एक उद्देश्य देखो कहे के मतलब लोगन के जोन बतावल कि दुनिया भर के वैज्ञानिक एचआईवी वैक्सीन बनावे में लगल हवा, ये हम लोगन के जागरूकता फैलावे के बा
0: बिल्कुल,
1: कि एकर वैक्सीन बने में लगल हमें लोग। अब जैसे कि लोग वैक्सीन का जो ट्रायल के हिस्सा लेवल, उनका योगदान के सलाम देवे के बा, कहे कि जो लोगन मिल के वैज्ञानिक लोग का एकर वैक्सीन बनावत हवा, हम लोगन के जज्बा उनका सलाम करे के। अब इतना कठिन दवाई भैया अभी तक जो नहीं सफल हो पाए, लेकिन प्रयास लगल बा।
0: प्रयास जारी
1: और
0: है,
1: देखा हम लोगन
0: बिल्कुल
1: के एमए का करे के बाद, जैसे कि अभी हम लोगन जागरूकता का मतलब यह बाना भैया कि अपने पंच भैया लोगन में जागरूकता फैलावल जाए कि अभी अपने बचपन में समय समय पे, बचपन में ही नहीं सब हर केहू में समय समय में खून का जांच हम लोगन करावल जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अगर
0: बिल्कुल
1: हम लोगन कहीं बाहर जाते हैं तो अगर कहीं ऐसा जो सुई, एक सुई से दो व्यक्ति के बिल्कुल सुई नहीं लगे के चाहिए, काहे कि देखे
0: हाँ,
1: ओकरे
0: हो
1: लगले
0: सके
1: से
0: अगला
1: भी
0: मरीज हो,
1: ऊ फैला ला भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो देखा हम लोगों के बच बचा के रहे की जरूरत बा, कहे कि देखा इलाज से ज्यादा बचाव
0: बचाओ।
1: बचाव हुए के चाहिए। और अगर हम लोगन जागरूक रह भैया ना, तो देखा हम लोगन के इस सब बीमारी से बचल जा सकेला। और देखा कहे के मतलब बा कि जागरूकता के मतलब ही यह बा कि हम लोगन ये बीमारी से के तरीका से फैलला अपने पंच भाई लोगन के भी बतावल जाए कि
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल
1: बीमारी फैले का देखा कई मतलब तरीका बा। अपन जैसे यौन संबंध द्वारा अपन ये बीमारी फैलला, सुई का जैसे अभी हम बात करनी है ऐसे फैलला, बच्चा जब जन्म के समय अपने माँ के गर्भ में रहला तो ओसे देखा ये बीमारी फैलला।
0: और हमें जौन बाकी कभी खून की जरूरत पड़ला, ओहमें
1: हाँ
0: भी एक दूसरे के चढ़ौले से मान लो
1: बिल्कुल
0: जब ग्रसित हो तो उसे दिक्कत होला,
1: बिल्कुल, यही से कहल
0: तो
1: जाला ना कि
0: बिल्कुल
1: जांच कराकर ही कोनो काम करें। और देखा अपन हम लोगन बच बचा के रहल जाए, और अपने कार्यक्रम में जब हम लोगन जुटल गए बा, बातचीत कर ले जात बा, तो यही विषय पर यानी कि एड्स के प्रति जागरूकता ही बचाव है, ये विषय पे जोन सुनील कुमार श्रीवास्तव जो जी हम जौन की परामर्शदाता मेडिकल कॉलेज सोनभद्र से हम
0: अच्छा,
1: जिलेबी भौजी के भेंट मुलाकात भेल बा अपन। और का बात भेल बा हम तो कहब ना कि
0: इन्हें की जबानी सुनल जाए
1: चले
0: और समझल जाए।
1: चले।
2: साथियों, आज 18 मई पूरे वैश्विक स्तर पर विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के रूप में जाना जाता है। आज का दिन उन हजारों वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्वयं सेवकों को समर्पित है जो एचआईवी यानी एड्स को जड़ से खत्म करने के लिए एक वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। आज हम इस पर चर्चा करने के लिए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोनभद्र लोढ़ी में सुनील कुमार श्रीवास्तव के साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर जी, चूंकि आज टीकाकरण दिवस है, वैक्सीनेशन की चर्चा होती है, तो सबसे पहले हम और आम जन के जहन में एक जो सबसे सामान्य सवाल आता है वो ये है कि पोलियो, चेचक और अब तो कोरोना की भी वैक्सीन आ गई है, फिर भी एचआईवी की वैक्सीन में इतना विलंब क्यों?
3: बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैम आपका। जैसा कि आपने बताया कि कोरोना की वैक्सीन आ गई, चेचक की वैक्सीन आ गई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वैक्सीन पहले से ही आ चुकी हैं, लेकिन अभी एचआईवी की वैक्सीन क्यों नहीं आई, इस पर थोड़ा सा हम आपको इस पर ब्रीफ करना चाहेंगे कि इस पर वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार वैक्सीन ट्रायल मोड में चल रहा है और उम्मीद है कि ये 1 से 1.5 वर्षों के बीच हमारे मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। ये वैक्सीन 1 साल में 2 बार लगाई जाएगी, उन व्यक्तियों को लगाई जाएगी, उन मरीजों को लगाई जाएगी जो एचआईवी की दवाएं ले रहे हैं।
2: जी जी, यह भी एक अच्छी फतह है
3: जी
2: कि कम से कम जो एचआईवी पॉजिटिव हैं, एड्स ग्रसित हैं,
3: जी
2: उनको नियंत्रित करने के लिए
3: जी ये वैक्सीन
2: आ गई है।
3: जी,
2: ये एक अच्छी बात है क्योंकि यह बीमारी संक्रमण बीमारियों में आती है और एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे को होता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल
2: पर
3: आपने सही
2: इस पर आप हमें अच्छे से बताएंगे, श्रोताओं को बताएंगे कि कारण क्या है।

0: क्यों फैलता है, कैसे ज्यादा आजकल फैल रहा है?
1: जी, ये फैलने का कारण सबसे मेन मुख्य चार ही हैं। मुख्यतः चार कारण हैं जिससे एचआईवी का संक्रमण होता है। नंबर वन, कोई भी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, ट्रांसजेंडर हैं, किसी के साथ अगर असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करते हैं तो उनसे एचआईवी होने का खतरा हमेशा बना रहता है।
0: जी
1: नंबर दो है, अगर कोई भी एचआईवी संक्रमित सुई या उसके साझे प्रयोग किया जाए तो उससे एचआईवी का संक्रमण बहुत तेज़ी से हो सकता है। जहाँ पे नीडल शेयरिंग की अगर बात करते हैं तो उसमें इंजेक्टिंग ड्रग यूजर जो इंजेक्शन के माध्यम से नशे का सेवन करने वाले व्यक्ति हैं, वो एक समूह बना कर के रहते हैं और वो जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने लोगों को वो संक्रमण हो सकता है। साथ साथ इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है, जो कि हमारे यहाँ अभी जल्दी ही केस भी पाए गए थे कि टैटू बनवाने से भी एचआईवी का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है।
0: अच्छा,
1: और
0: और लड़के लड़कियों के साथ साथ अब तो मतलब प्रौढ़ व्यक्ति भी हैं जो टैटू का शौक रख
1: जी,
0: रहे हैं,
1: टैटू के शौक रखने
0: महिलाएं
1: वाले
0: भी बढ़ चढ़ के।
1: महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, अब तो पूरे बॉडी पे भी वो अपना टैटू बनवा रहे हैं। तो मुख्यतः कारण यही है कि हम नीडल शेयरिंग, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे मॉल हैं, उनके वहाँ जब जाते हैं तो टैटू वाले हमेशा उपलब्ध रहते हैं,
0: जी बिल्कुल,
1: तो कहीं ना कहीं वो एक ही निडिल का बार बार प्रयोग करते हैं जिससे ये इन्फेक्शन एचआईवी का होने का खतरा हमेशा बना है। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तीसरा कारण ये है कि एचआईवी संक्रमित ब्लड या उसके उत्पाद से, अगर कोई भी एचआईवी संक्रमित रक्त किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उसे एचआईवी का संक्रमण 100% निश्चित है। या अगर ब्लड से बनी हुई कोई भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है तो हम लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं, तो वो भी एक ब्लड का ही उत्पाद है, रक्त का
0: जी
1: ही
0: जी
1: उत्पाद
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: तो अगर वो भी एचआईवी संक्रमित है तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को भी एचआईवी संक्रमण
0: हो
1: होगा।
0: सकता है।
1: तो ये अपने तीन कारण आपको बता चुके हैं। चौथा और लास्ट जो कारण है, कोई भी एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिलाएं हैं तो
0: जी
1: उसके द्वारा अगर होने वाला बच्चा है तो मे बी कि उसका भी बच्चा भी एचआईवी संक्रमित हो
0: हो
1: सकता
0: सकता
1: है।
0: है, बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ये
0: बिल्कुल।
1: मुख्यतः चार कारण फैलने के हैं। इसके साथ ही हम संक्षेप में बचाव की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें फैलने के कारण नहीं पता होगा तो हम अपना बचाव नहीं कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: तो हर व्यक्ति को एचआईवी संक्रमण के बारे में पता होना चाहिए कि किस कारणों से फैलता है, तभी वो उसका बचाव कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है बचाव का, बिल्कुल वो घर में उपयोग कर सकते हैं, कहीं उनको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है 1097, उस पर वो फ़ोन करके एचआईवी से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई वो संदेह है किसी प्रकार का। सारे जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आईसीटीसी के नाम से एक सेंटर भी स्थापित किया गया, जो संचालित किया जाता है, वहाँ पे एचआईवी की परामर्श की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं, एचआईवी के मुफ्त जांच उपलब्ध है और इसका ट्रीटमेंट भी मुफ्त है। ये पूरा पूरा भारत सरकार की ओर से सब कुछ निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। डोर टू डोर जा कर के कैंपेन किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, कॉलेजों में भी जा कर के हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, इंटर कॉलेज हुए, डिग्री कॉलेज हुए, ग्रामीण प्रधानों के माध्यम से जा कर के हम लोग संपर्क करते हैं और उनको भी एचआईवी के बारे में
0: जागरूक।
1: अवेयर करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी
1: तो
0: अच्छी बात बताई आपने, टीकाकरण फैलने के कारण, बचाव। अब इसमें जो सबसे अहम बात आती है कि कोई व्यक्ति कैसे इस बात को समझ पाए कि वो एचआईवी ग्रसित है, मतलब इसके ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसको देखने के बाद तत्काल हमें उपचार और परीक्षण में लग जाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एचआईवी संक्रमित हैं।
0: यस
1: तो इसका मुख्यतः देखिए जो लक्षण होते हैं, सामान्य सभी बीमारियों में एक जैसे ही लक्षण होते हैं, इसमें खास दो लक्षण मुख्य रूप से होते हैं कि इसमें वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है, जो भी अगर एचआईवी
0: वजन
1: का
0: का
1: संक्रमण
0: गिरना।
1: होता है, वजन का गिरना बहुत तेज़ी से होता है, लगातार बुखार आना। हम दवा तो कर रहे हैं पर जब तक दवा का असर है तब तक ठीक है, फिर जैसे ही दवा हम छोड़ते हैं फिर वो रिपीट कर जाता है बुखार, लूज मोशन, डायरिया बार बार होता है। तो ये मुख्यतः दो कारण हैं। बाकी और सामान्य लक्षण हैं, शरीर पे रेशेज होते हैं, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, इचिंग होती है, कुछ लिए इंटरनल पार्ट्स में दाने हो जाते हैं, कुछ लोग दांत के नाम से भी कहते हैं, कुछ लोग खुजली के नाम से भी जानते हैं, अपने अपनी भाषाओं में लोगों का प्रयोग है करते हैं, लेकिन ये सामान्यतः कहीं ना कहीं एचआईवी के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का किसी व्यक्ति को अपने शरीर में दिखाई देती है, समस्याएं समझ में आती हैं, तो तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, अपनी समस्या को अवगत करा कर चिकित्सक से परामर्श ले करके एचआईवी की जाँच कराएँ। और अगर आप आईसीटीसी सेंटर में डायरेक्ट आते हैं तो वहाँ पर परामर्शदाता आपको बैठे रहते हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे और आपको एचआईवी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और निःशुल्क जांच कराने के बाद अगर उसमें कोई एचआईवी का संक्रमण पाया जाता है तो उनकी तत्काल एचआईवी की दवाई एआरटी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है।
0: जी जी जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को तत्काल अपने निकटवर्ती चिकित्सालय में जाकर संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम आपसे एक संदेश चाहेंगे। दुर्भाग्यवश जो एचआईवी पॉजिटिव एड्स ग्रसित लोग हैं उनके लिए कि कैसे वो अपने को सुरक्षित रखें, उनके खान पान, उनके इलाज, इस संदर्भ में
1: अपने आप को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही सरल माध्यम है। अगर हमें एचआईवी फैलने के कारण पता है तो वही हमारे बचाव के कारण भी हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको चार फैलने के कारण बताए हैं, वही हमारे बचाव भी हैं। अगर कोई भी हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करते हैं तो हमेशा उनमें कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, सेफ सेक्स के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा है जो सिरिंज साझा प्रयोग होता है, हम उससे बचें, हर बार नए सिरिंज का इस्तेमाल करें, टैटू बनवाने से बचें। और जो संक्रमित ब्लड चढ़ाने की बात होती है तो हर बार सरकारी ब्लड बैंक जो लाइसेंस प्राप्त रक्त कोष हैं उनसे ही हमें रक्त लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे प्रकार की एचआईवी है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, मलेरिया है, टाइफाइड है। ये सारी जांच करने के बाद जब चिकित्सक ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि इसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है तभी वो ब्लड या रक्त स्टोर किया जाता है दूसरे व्यक्ति को देने के।
0: इनके डाइट को लेकर कुछ विशेष
1: मुख्यतः इसमें डाइट एंड न्यूट्रिशन का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि एचआईवी संक्रमण में हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमजोर हो जाती है, नष्ट होने लगती है, तो उसे हमें बनाए रखने के लिए हमें अच्छे डाइट एंड न्यूट्रिशन लेने चाहिए। अच्छे डाइट न्यूट्रिशन में अगर हम बात करते हैं तो हरे सब्जियों का इस्तेमाल करें, फल अधिक मात्रा में इस्तेमाल करें, सलाद का सेवन करें, तेल मसाला चिकना का प्रयोग कम से कम करें, अंकुरित चने का सेवन करें। अगर किसी प्रकार का अगर शुगर नहीं है तो उसमें हम गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड़ और चना अंकुरित करके खाने से आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता
0: है। जी जी,
1: तो हमें अच्छे डाइट पे ध्यान देना चाहिए। उसका एक नियमित चार्ट बना लें कि हमें सुबह नाश्ता कितने बजे करना है, लंच कितने बजे करना है और डिनर कितने बजे करना है। अगर हम अपना डाइट चार्ट निर्धारित करते हैं, अपना समय निश्चित करता है, तो निश्चित तौर पे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी और हम एचआईवी संक्रमित होने से लड़ सकते हैं, उनसे हम बीमारियों से बच सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, कहते हैं कि उपचार से भला है बचाव
1: जी।
0: और बचाव के लिए आवश्यक है जागरूकता।
1: जागरूकता
0: तो अपने श्रोताओं को जागरूक कराने के लिए इस दिवस पर बहुत अच्छी बातचीत करी, अपना अच्छा समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
2: लो बहन।
3: हाँ बोला भैया।
2: देखो सावधानी ही बचाव है, तो ऐसे हम लोग के जौन बाकी बिल्कुल सतर्क रह के चाहे कि किस तरीके जौन हम लोग का कुछ करे के चाहे जौन से कि हम लोग बचल जा सकला।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये इतना बढ़िया जानकारी रहल सुनील कुमार श्रीवास्तव जौन परामर्शदाता मेडिकल कॉलेज सोनभद्र से रहन, आप फरिया के बतियावत रहन और सुरसरी द्विवेदी जी भी अपन पूछत रहन।
3: बिल्कुल, सवाल उनका
2: बिल्कुल
3: इतना बढ़िया रहल और
2: जवाब भी बहुत बढ़िया
3: रहा। अपन पंच भी लोगन भी जागरूक भयल हुई है। अब देवल जी भैया उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे नहीं एक मन फेर के माध्यम से अगर धन्यवाद हो तो का पूछे के हा, तो बिना देर कहले चले एक देशभक्ति गीत सुनल जाए।
2: तो नंद किशोर शर्मा और संहतिया भैया सुनाओ।
3: चले सुनल जाए।

0: ओ बहन,
1: हाँ बोला भैया,
0: कितना बढ़िया नंद किशोर शर्मा उनकर संगतिया भैया मन मन शायन करौलन।
1: बिल्कुल।
0: और मन तो कहते कि अभी आओ सुनत रहती, लेकिन अभी भी कुछ आओ बात बत कही हम लोग के हो ले, और फिर उनके अवसर मिली
1: बिल्कुल।
0: तो ये समय जोन बाकी खेती

0: किसान की जो हम लोग बात कही जाला बड़ा तकनीकी इसमें कुछ बदला था
1: हाँ।
0: और इसने में अगर जो बाकी जो किसान ओके चेत लेलन तो निश्चित रूप से जौन बहुत अधिक लागत लगा करके अपन ज्यादा पैसा लगा देव थन और जोन बाकी आमदनी कम कर पाओ थन
1: एकदम
0: उसे बचत कर सकल।
1: यही से कहा जाला आज के समय में कि मेहनत से खेती नहीं अकल से खेती।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखा इतना जब अकल से खेती के बात भइल तो देखा अब तरीके तरीके का मशीन चल गल बा भैया। अगर हम लोगन खेती में अगर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करत हैं तो देखा हम लोगन के जितना लागत लगत पर लागत से ज्यादा मुनाफा हम लोगन कमाई। एक बदे हम लोगन के जब भी अब कार्यक्रम में जब भी जुटी ला जाए तो अपने विशेषज्ञ भी हम लोगन के जो जानकारी बा ना इतना पुरहर रहा ला भैया कि उनके अगर जानकारी के ही अगर हम लोगन सुन के खेती करल जाए तो हम लोगन के बहुत फायदा हुई। और देखा किसान भी हम लोगन भी अब आज के समय में बहुत जागरूक भी हो चुकल हवा कि वो देखा तरह तरह के जहाँ अपन कोई भी कार्यक्रम होला वहाँ जरूर शामिल होवलन और भरपूर जानकारी इकट्ठा करलन और अपने खेती में ओकर प्रयोग करलन।
0: बिल्कुल। अगर ये समय जौन बा कि हम लोग समतलीकरण के बात कर जाए
1: हाँ।
0: तो जौन ढालू जमीन रहला तो हमें पानी की ज्यादा खपत होला।
1: बिल्कुल।
0: अब पता चल कि दिन भर हम चलावत है तो हमें या तो बिजली के बिल उठत है या तो फिर जौन बा कि अगर डीजल से चलावल जाता है तो डीजल ज्यादा खपत होता।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे बुद्धिमानी की बात है कि ओके समतलीकरण करा लें। समतल में कम पानी लगी हमें और कम पानी में पूरा खेत जल्दी भर जाए और जोन बाकी के नमी बरकरार मिल जाए। साथ साथ अगर जोन बाकी कोई भी फसल हम लोग लगावत हैं तो हमें ड्रिप सिंचाई या तो जोन बाकी बौछारी सिंचाई के प्रयोग करेंगे स्प्रिंकलर के
1: बूंद बूंद बूंद हाँ, हाँ, पानी हाँ, जाला तो अपन फसल में एकदम गहरा प्रभाव डाला।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अगर देखा हम लोग ऊपर से भर देला तो बूंद बूंद जो सिंचाई देखा पानी तो अधिक लगा लेकिन देखा फायदा ड्रिप सिंचाई जैसे बूंद बूंद सिंचाई के बात कहला है उससे ज्यादा मिला।
0: आप जोन बाकी केहू मरीज के पानी चढ़त दिखले हुई है
1: हाँ, तो बूंद बूंद ही
0: अगर अगर ओके जोन बाकी कस के खोल के चढ़ा दे तो ओके जोन बाकी नुकसान कर जाए।
1: नहीं तुरंत देखा डॉक्टर कहलन कि अगर सीधा पानी शरीर में जाए तो वो मरीज के जड़ा यानी कि जुड़ी धरले वाला नुकसान पहुंचा वाला। और देखा अगर बूंद बूंद जाला तो देखा शरीर के अपन एनर्जी भी प्रदान कराला शरीर मजबूत हो जाला अपन रोग से लड़े का शक्ति भी अंदर आ जाला।
0: बिल्कुल ठीक वही स्थिति है जोन बाकी फसल के अगर बूंद बूंद करके पानी मिली तो जितना आवश्यकता है उतने जोन बाकी होके मिली और स्वस्थ रही तो इतने समझ जल जाए कि बूंद बूंद कितना लाभकारी है। और दूसरी बात की हमें जोन बाकी 70% पानी बच जाये हमन के 30% में ही अच्छा फसल उत्पादन हो जाए तो ऐसे हम लोग के एक प्रयोग करे चाहिए। और जोन बाकी पाली हाउस के माध्यम से जोन खेती करे के बात बत कही होला उसमें कीट पतंगा तरह तरह के रोग जो व्याधि लगे की संभावना होला
1: हाँ।
0: उसे बचत हुई जिसे जाकर के पतई कुछ कीड़ा खा जाते हैं कुछ में जोन बाकी सेमी लू पर कीड़ा लग जाता है जैसे चना वगैरह में।
1: बिल्कुल।
0: और उसमें जब रही अंदर तो केहू प्रकार के कीट पतंगा पहुंचे की संभावना नहीं रही थी इससे जोन बाकी एक तो बचत हुई दूसरे में अच्छा उत्पादन हुई।
1: बिल्कुल। यही से कहा गलगा ना कि भैया कि देखा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगा
0: हाँ, हाँ,
1: इस समय ये सब आधुनिक तकनीक है कि हम लोगों ने इस्तेमाल करके अपन खेती में मुनाफा कमाल जा सकेला। तो अपने यही से कहा जाला ना देखा अभी जब भी अपने पंचायती में भैया जुटा ना तो बढ़िया बढ़िया जानकारी से हम लोगों के बड़ी मतलब जानकारी मिलला और खेती करे का नया नया तरीका सीखे के मिलला।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो देखा आज जैसे अपने कार्यक्रम में जब पंचायती में जब जुटले गई बा तो देखा ग्राफ्टेड बैगन का लाभकारी खेती जैसे आप अभी कहला है पाली हाउस के बात कहला है
0: बिल्कुल,
1: अब देखा ग्राफ्टेड बैगन का लाभकारी खेती के बारे में अपन जो कमला प्रसाद हवा जवन की प्रगतिशील किसान हवा उनसे अपन मुन्ना भैया के बात बत कही भइल बा और का वो जानकारी इनसे ले लेना हुआ और का ये जानकारी देत हुआ हम तो कहब ना कि बिना देर के लिए चले इनका जानकारी सुनल जाए।
2: किसान भाई बेहतर उत्पादन प्राप्त करे के खातिर हम लोग समय समय पर जो भी वैज्ञानिक लोगन के नया नया खोज बा शोध बा ओके भी अमल में लियावल जाला चाहे ग्राफ्टेड बैगन टमाटर के बात हो या फिर अन्य जितना भी शोधित बीज हैं एक बारे में बात हो तरकारी वाली बात हो या फिर फल फूल वाली बात हो कोशिश यह रहला कि जो भी संस्तुत किस्म बा अपने इलाके के खातिर खास करके ओके ही हम अपने खेती में लगाएं जैसे कि उसे अच्छा मुनाफा मिल सके। आज बहुत से अपने किसान भाई ग्राफ्टेड बैंगन बा या टमाटर बा ओकी खेती से जुड़े लगल हुआ का एकर नफा नुकसान बा अपने इलाके के खातिर कितना ई उपयोगी बा किसान भाई लोगन के खातिर कितना ई फायदेमंद बा यही सब विषय पर आज हम लोग बातचीत कर जाए। और बातचीत करे के खातिर अपने साथ हुआ कर्मा ब्लॉक के खुटहनिया से कमला।

0: प्रसाद जी, आप एक प्रगतिशील किसान हो, खेती बाड़ी बहुत ही मन और लगन से करेलन, हर मौसम के तरकारी अनाज फल सब्जी लेलन और ओके बहुत ही विधिवत ढंग से करेलन, सोच समझ के करेलन, योजना बना करके करेलन। उम्मीद बा कि आज के बातचीत से और भी अपने किसान भाई लाभान्वित हुई हैं, तो बातचीत के सिलसिले के शुरू कर जाए। सबसे पहले कमला प्रसाद जी, आपके अपने किसान बाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा।
1: जी, आपको भी बहुत स्वागत बा।
0: कमला प्रसाद जी, हम और अपने किसान भाई ये जानल चाहिए कि सामान्य बैगन और ये ग्राफ्टेड बैगन में का अंतर बा।
1: जी, हमारे यहाँ बैगन का खेती काफी समय से हमारे जिला में कई जले,
0: जी
1: तो एमन सबसे बड़ा समस्या जो आवत रहा वो बिल्ट का आवत रहा, मतलब उकठा का। तो मिर्च का या टमाटर का और बैगन का जड़ से उखड़ जाए के सूख जाता रहा, पूरा पौधा पूरा प्लाट खाली हो जाता रहा किसान का। तो एक ध्यान में रखते हुए कुछ वैज्ञानिक जो शोध कैले कि आखिर कौन ऐसा उपाय लगावल जाए कि सूखे ना,
0: जी।
1: तो एकरे बदे के ये लोग शोध की नहीं कि जंगल में जो जंगली बैगन होला वो अगर पानी ना मिली तबो, पानी मिल जाए तबो, चाहे कौनो भी परिस्थिति में वो सूखबे ना करे जल्दी 2-4-5 साल तक, तो ओकर सीड लेके ओकर नर्सरी तैयार कर देलन और वही के जड़ पर साधारण जो वेराइटी है हमन की हन वो वेराइटी का ऊपर ग्राफ्टिंग कर दिहल जाला।
0: जी।
1: तो जब ऊपर ग्राफ्टिंग हो जाला तो ऊपर जोन फुनगी है वो हमरे अपने
0: अपने इलाके
1: मन
0: वाला।
1: पसंद के वेराइटी के रही और नीचे जोन जड़ है वो जंगली बैगन के रही।
0: जंगली वाला रे।
1: तो जंगली बैगन के जड़ में कोनो रोग ना लगी तो हमार पौधा अगर जड़ में रोग ना लगल तो ऊपर से एकदम स्वस्थ रही और जंगली बैगन का जोन जड़ होले वो काफी विकसित हो जाले। तो विकसित हो गईले के वजह से वो ज्यादातर पोषण जोन हो पौधा के प्रदान
0: बढ़िया
1: करत रहे हर
0: जी।
1: समय।
0: वो हर मौसम के अनुकूल हो जाला,
1: जी
0: सहनशीलता ज्यादा रहला।
1: जी जी जी
0: और जब सहनशीलता ज्यादा रहला और अपन इलाका के देखते हुए, खास करके कभी कभी पानी के अभाव हो जाला, तेज धूप हो जाला या पानी ज्यादा बरस जाला, ये सब के खातिर समस्या नहीं भाई। यानी तो कहे के मतलब कि जो ग्राफ्टेड बैंगन के चुनाव करे के खातिर किसान भाई कदम बढ़ौलें, यही
1: जी
0: वजह से बढ़ौलें कि जो आमतौर पर जो बैंगन की खेती होत रहा उनमें जो उकठा के समस्या बा वो रहत रहल, तो इनमें उसे निजात मिल जाए और अच्छा अच्छा उत्पादन वगैरह में का असर दिखाई देला, पैदावार।
1: उत्पादन में ऐसे समझ लें कि लगभग दुगना का अंतर हो।
0: दुगना के अंतर।
1: जी,
0: जी
1: ओका कारण यह हो कि जिसे साधारण 20 से ग्रो हुआ पौधा अगर आप लगावत हुआ तो 4-5 महीना में लगभग ओकर लाइफ टाइम लोग खत्म समझ लेवाना।
0: जी
1: लेकिन जोन ये मतलब जंगली बैगन पर ग्राफ्टिंग कह के लगेला तो ओकर जड़ चूंकि बहुत मजबूत रहेले तो 1 साल 2 साल तक चलावल जा सकल अगर प्रॉपर मैनेजमेंट रहे, कीटनाशक फंजीसाइड और उर्वरक प्रबंधन का पर्याप्त अगर आपका साधन हो और ड्रिप मल्चिंग सारा अगर व्यवस्था आपका ठीक ठाक हो तो ये बड़े आराम से 2-2 साल तक लोग सर्वाइव करावत हूँ एक।
0: अजी वाह, क्या बात है, तो बड़ा अच्छा आपके तरकीब बा। अच्छा कमला प्रसाद जी, जैसे एक तो पौधा जब लग जाला तो शुरुआती दौर में जो उसे फलत मिलला और कुछ दिन बाद, यानी साल भर बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद जो फल मिलला, तो का ओके स्वाद में या ओके गुणवत्ता में कोई असर पड़ला,
1: नहीं,
0: वैसे ही
1: स्वाद
0: मिली।
1: स्वाद और गुणवत्ता में कोनो अंतर नहीं आई भी है और बहुत बेहतरीन रही। लेकिन बशर्ते कि ऐसे आप समझ लें कि अब शुरुआत में जोन हम ओके बेसल दे दहली या जोन खाद दे दहली तो एक बेरी देले से काम ना हुई।
0: जी।
1: जैसे अगर गाय भैंस रोज दूध देते हो तो रोज ओके खरी
0: आहार
1: दाना
0: भी
1: और
0: देवे के बाद। जी
1: ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह सब कुछ देवे के पड़ा ला अच्छा दूध लेवे दे।
0: जी।
1: ठीक वही तरह से अगर हमें रोज इसे आमदनी लेवे के हर चौथे दिन हार्वेस्टिंग लेवे के है तो निश्चित रूप से के खुराक हरदम चाहिए।
0: पोषण देवे के पड़ी।
1: जी
0: जी तो ये तो भेल बात आपके, चलिए उत्पादन के।
1: जी
0: अब थोड़ा सा तरीका जान लिहल जाए कि एके लगावे के खातिर जो पौध के व्यवस्था आप करिए वो कैसे हुई।
1: तो पौध देखें हम लोग तो वहां से लिया ला अंबिकापुर से, तो उधर नर्सरी है अंबिकापुर में, वहां से पौधा मिल जाला। तो वो पौधा पर नीचे जोन है जंगली बैगन करहला, ऊपर जोन है हम जोन वेराइटी बता देब जिसे

0: हम लोग 3x5 पर लगावल जाला, यानी
1: अच्छा
0: लाइन से लाइन का दूरी 5 फीट और पौधा से पौधा का दूरी 3 फीट और सिंगल पौधा एक जगह लगावल जाला। तो ये तरह से के लगावे खोला, लेकिन अब वो जो 5 फीट के हर 5 फीट पर एक एक बेड बनावे खोला,
1: अच्छा
0: जितना
1: अच्छा
0: बेड बनाए के ही लगाना बा, और बेड में ही हमके बेसल डालना बा, जिसे गोबर का खूब सड़ल कंपोस्ट का खाद हो ओके हम वही में डाल दे, या सरसों खली नीम खली जो भी हमके डालना हो, जितनी तरह के उर्वरक आप डालल चाहती हैं वही बेड में ही डलाई, और बेड में डलाइले के बाद तब ऊपर से ड्रिप डाल दी हैं, और ड्रिप डालने के बाद और ड्रिप के ऊपर से फिर मल्चिंग हो जाएगी। तो पहले सावधानी बरते की हो कि जब आप बेड बनाए के ड्रिप डाल दहलन तो ड्रिप पहले चेक करे के होला, तो एक बार पानी चलाए के हमें चेक करे के हो कि ये प्रॉपर जितना ओकर छेद हुए वो हर जगह से पानी निकलत हो कि ना निकलत हो, क्योंकि जब मल्चिंग लग जाए तो आपके पता न लगी कि कहाँ से पानी निकलत हो कहाँ से ना
1: ये सब
0: निकलत हो,
1: पहले मैं चेक कर लीजिए।
0: तो पहले ही से चेक करके ओकरे बाद तब फिर ऊपर से मल्चिंग लगावें, और मल्चिंग लगाए के पहले एक बार बेड के गीला कर दें, फिर 1-2 दिन का समय दे दें ओके, थोड़ा सा 2-3 दिन समय दे दें, और वो जब बेड गीला हो गई तो 2-3 दिन के बाद तब ऊपर पौधा का ट्रांसप्लांटिंग करें,
1: अच्छा,
0: तो जितना दूरी पर जरूरत हो उतना दूर पर वो मल्चिंग में छेद करके
1: लगा
0: और
1: दें।
0: पौधा लगाई जाए, और पौधा लगाए देने के बाद और तब अपन 1-2 दिन के अंदर कापर ऑक्सी क्लोराइड का घोल बना लें, वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल, 200 लीटर अगर पानी लेते हो तो 400 ग्राम अमन वो डालेगी हुई आपके दवाई, और खूब घोल बना लें, और वो घोल के जोन है लगभग 50 ml प्रति पौधा के हिसाब से ओकर ड्रेंजिंग कर दें, जोने की वजह से अगर कोनो तरह का फंगस वगैरह होकर तो उसे आपके निजात मिल जाए और आपका पौधा तंदुरुस्त चलना शुरू कर दे।
1: कितना दिन बाद एमए फल फूल आवे लगेला?
0: जहिया आप लगा दिए ओकरे 60 दिन बाद एमएन से आपके फल फूल मिले शुरू हो
1: मिले
0: जाएगी।
1: शुरू हो जाए और फिर आगे आप देखभाल निगरानी करत रहें, पर्याप्त पोषण आप देत रहें, तो इसे अच्छा लाभ आपके मिल सकेला। और उत्पादन के बारे में भी आप कहलें कि भरपूर उत्पादन मिलेला, बाजार के दृष्टि से बढ़िया रहला। कमला प्रसाद जी, ई तो इतना भइल, का आगे चल के भी कुछ और उर्वरक प्रबंध करे के
0: जी
1: पड़ी?
0: जी उर्वरक प्रबंध तो ऐसे समझ लें कि जैसे हम पशु पालीला तो पशु के स्वास्थ्य पर कैसन होकर स्वास्थ्य है जैसे हमके पता लग जाला, हम लोग किसान है जाए तो जब हमन किसान है जाए तो हमन के पौधा का शकल देख के पता लग जाला कि एक कोने कोने चीज का कमी हो,
1: जी
0: तो जौने उर्वरक का कमी रही जैसे शुरुआत में ओके जब बढ़वार वृद्धि विकास का जरूरत हो
1: हाँ
0: तो वो समय एक थे वाटर सोल्यूबल उर्वरक आवाला 1919-1919, तो ई लगभग हमके 35 से 40 दिन तक चलावे को होला और लगभग चौथे दिन ही चलेला,
1: अच्छा,
0: तो एकर मात्रा लगभग 1 एकड़ में 1 किलो से लेके 2 किलो तक रही, शुरू में ऐसे चलावत हैं और नीचे बेसल धेले हो आपको, तो जब ये चलत रही तो आपके जब 30-35 दिन हो जाए तो जब उन फ्लावरिंग कायदे से आवे लगी तब इमन उर्वरक बदल दहल जी, तब ओकरे बाद उर्वरक चली इमन 0-52-34 ई चली 2 किलो प्रति एकड़, तो ये आप अपने 200 लीटर के ड्रम में के घोल लें और ओकरे बाद ड्रिप से कनेक्टेड कर दी हैं, ये आराम से हर पौधा की जो है आपका खाद जात रही, तो 0-52-34 है या 13-0-45 है 0-0-61 है, एक तरह से जैसन जैसन उनकी आवश्यकता पड़ी
1: देत रही हैं आप?
0: ओके देत रही हैं, और साथ में जब 15-15 दिन पर जौन है अच्छे क्वालिटी का जैसे ही आपका मैनकोजेब और कर्बेंडाजिम का मिक्सचर है वाला तो लगभग आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से येहू को 15-15 दिन पर एक चलावत रही हैं, जोने की वजह से फंगस वगैरह का कोनो शिकायत जड़ में भी नहीं आवे।
1: कमला प्रसाद जी, इतना जुगुत आप बतौलें, चाहे उर्वरक प्रबंध के बात हो, फिर लगावे के बात हो, बेड बनावे के बात हो, कई तरह के ध्यान देवाली वाली बात हो, कुल मिला करके और जब बाजार में आपन जाई तो लाभकारी खेती बाई?
0: जी अब आप ही समझ लें कि

0: अब बैगन के रेट बढ़े लगल। आज हम ई मई के महीना चलत हो, एमन बैगन के रेट धीरे धीरे बढ़े लगल, और जैसे ही जुलाई चढ़ जाई तो एकर रेट जोन है 25-30 रुपया से ऊपर हो जाई, और 50-60 रुपया तक चल जाला आराम से। जुलाई अगस्त में 60-60 रुपया किलो तक बिकाला।
1: जी जी
0: तो जब आपका पौधा पहले से तैयार हो, जिसे ये समय आप लगा दिले हुए, तो 2 महीना में आपको मेच्योरिटी हो जाई, आपको लगी निकले, तब आपके पैसा अच्छा खासा पैसा देही। और चूंकि लंबी अवधि का ही फसल हो, तो कबो कबो बहुत डाउनफॉल भी देखे के पड़ाला, 3 रुपया किलो बेचे के पड़ाला, तो आपके 60 रुपया किलो को भाव मिली।
1: जी
0: तो
1: जी
0: अगर एवरेज लिए तो आपके पंद्रह
1: फायदा
0: रुपया
1: हो
0: दस
1: जाएगा।
0: रुपया 15 रुपया का रेट जरूर मिल जाए।
1: जी, तो किसान भाई देखें आज अपने साथ रहना करमा ब्लॉक के खुटहनिया से कमला प्रसाद जी, और बातचीत हम लोग करत रहली जा आपके ग्राफ्टेड बैगन के खेती के बारे में। पूरा जानकारी आपसे मिलल कि अगर आप एक देखभाल निगरानी बढ़िया ढंग से करत रहें तो काफ़ी लंबे अवधि तक आप ऐसे उत्पादन ले सकेलन, और जब लंबे अवधि तक आप ऐसे उत्पादन ली हैं तो निश्चित जोन बाकी आपके आमदनी पर असर पड़ी, और उम्मीद बाकी ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से और भी अपने किसान भाई जुड़ी हैं और लाभ उठाइए। तो कमला प्रसाद जी आज आप अपने किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भाई लोन की इतना बढ़िया जानकारी दे लें, एक ही खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भोला भैया
0: बुलाओ बहन।
2: देखा कितना बढ़िया ग्राफ्टेड बैगन का लाभकारी खेती विषय पे जानकारी देलन है। कमला
0: हाँ,
2: प्रसाद जी प्रगतिशील किसान हो और एकदम फरिया फरिया के जानकारी देलन है। भैया के देवल जय, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल। कैसे कि ये ग्राफ्टेड खेती जोन बाकी इतना महत्वपूर्ण है कि जो नीचे की जड़ होला मजबूत होला, और ऊपर वाला जोन बाकी कोमल भी रहे तो कोई बात नहीं। तो ऐसे में ओकर फलत बहुत अच्छा रहला, और नीचे के डंठल गले की संभावना नहीं रहे।
2: बिल्कुल।
0: तो ऐसे जोन बाकी ये बहुत ही सफल खेती करे की विधि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो कि जौन हम किसान भाई लोग अंधाधुन जौन बाकी उर्वरक डालीला, इससे जौन हम लोग के लागत ज्यादा लगाला, उससे बचे के साधारण तरीका यह हो कि मृदा का परीक्षण कराए पहले।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: जब मृदा परीक्षण कराई है तो हमें पोषक तत्व के आवश्यकता की जानकारी हुई
2: बिल्कुल
0: जे
2: भैया।
0: कौ?
2: और देखा मृदा
0: हाँ
2: परीक्षण जब करावल जाला ना तो यहो ध्यान रखे के बा कि हम लोगन खेती में जो इतना अंधाधुन पैसा झोंकी ल जा, अपन अगर अपने माटी परीक्षण के पहले अपन अगर खेती करत है तो जोन भी रासायनिक खेती है जैविक खाद का प्रयोग जोन अगर आवश्यकता से अधिक भी होला ओके डाल दे ल जा, लेकिन अगर जब अपन माटी परीक्षण करावत की जब हम लोगों के पता लगा ला ना फिर हम लोगों के ही भैया पछतावा होला कि देखा ये चीज का अधिकता रहा एक बाद भी हम लोगों ने ये चीज का प्रयोग करा कर ली जाए।
0: बिल्कुल
2: तो
0: बिल्कुल
2: देखा ये
0: बिल्कुल
2: तरीका से अगर हम लोग खेती जब भी करें तो अपन मौका लगाए तो जरूर अपन माटी परीक्षण करावल जाए, और माटी परीक्षण के बाद हम लोगों के अपन खेती पे विशेष ध्यान देवे के भी बहुत जरूरत नहीं होला, उत्पादन बहुत बढ़िया मिलेगा।
0: बिल्कुल। और एक साथ साथ जनबा की संरक्षित खेती भी बहुत लाभकारी है, जैसे ग्रीन हाउस और पाली हाउस में तापमान और नमी के जनबा की नियंत्रित करे खातिर बहुत ही अच्छा एक माध्यम मानल जाला।
2: बिल्कुल
0: एकर
2: बिल्कुल
0: फायदा हो कि मौसम के मार से बचाव, और बेमौसम सब्जियन के उत्पादन और पानी के कुशल उपयोग के
2: बिल्कुल
0: बारे में बहुत ही अच्छा जौन बाकी जानल जाला संरक्षित खेती।
2: बिल्कुल
0: ऐसे हम लोगन के निश्चित रूप से ये पर विशेष ध्यान दे करके हम लोग के करे के चाहिए।
2: बिल्कुल भैया। और देखा इतना बढ़िया जानकारी देत रहना ग्राफ्टेड बैगन के लाभकारी खेती, तो अब हम कहते हैं हमारे हाथ में एक पांती आ चुकल बा, अगर आप कहें तो अपने पंच भाई लोगन के बात के बतावल
0: तो
2: जाए
0: बैगन हो का जन
2: एकदम
0: बाकी?
2: बिल्कुल भैया। दुधी मंडी से हव अपन प्रति क्विंटल में अजय कुशवाहा भैया के भेजल बाजार भाव बा,
0: अच्छा अच्छा
2: तो
0: अच्छा अच्छा
2: देखें अब बैगन से ही हम तो कहा
0: हाँ
2: शुरुआत
0: बिल्कुल
2: करी, तो
0: बिल्कुल।
2: देखें अपन जो लंबा वाला बैगन बा भैया वो 800 रुपए प्रति क्विंटल है, गोल बैगन देखें 1200 रुपए प्रति क्विंटल,
0: अच्छा
2: और
0: अच्छा
2: हरा वाला बैगन देखें 1000 रुपए
0: क्या बात
2: क्विंटल।
0: है।
2: अब देखें आगे अपने पंच में लोगों के बात के बताएं कि दुधी मंडी में का बाजार भाव बा, देखें जो देसी खीरा बा वो 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल बा,
0: अच्छा
2: खीरा
0: अच्छा
2: देखें 600 से 700 बा, ककड़ी देखें 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल है, मूली देखें 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल है, प्याज देखें 1400 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर देखें 1800 से 2000 के बीच में बा, और चुकंदर देखें 2000 रुपया प्रति क्विंटल है,
0: अच्छा
2: हरा
0: अच्छा
2: मिर्चा देखें 4000 बा, धनिया 3500 रुपया प्रति क्विंटल, पुदीना 2000 बा, भिंडी देखें 400 से 500 रुपया के बीच में बा प्रति
0: अच्छा अच्छा
2: क्विंटल
0: अच्छा
2: में,
0: अच्छा
2: करेला देखे 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल, पका पपीता देखे 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल
3: दूधी मंडी में।
2: हाँ, कच्चा पपीता देखे 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल। अपन जो पका केला भैया 2000 रुपए प्रति क्विंटल है। कच्चा केला देखे 1100 से 1200 के बीच में है। कोहनी देखे 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल।
3: अच्छा अच्छा।
2: और लौकी देखे 400 से 500 वो है। और जो नेनुआ भैया देखे 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में बा। झींगी देखे 1500 से 2000 के बीच में बा।
3: अच्छा,
2: परवल
3: अच्छा,
2: देखे 2500 से 3000 के बीच में बा प्रति क्विंटल। और कुंदरू का दाम देखे 1200 रुपए प्रति क्विंटल है। अदरक देखे 7000 से 8000 है। लहसुन 8000 से 9000 रुपए प्रति क्विंटल। और जो बोड़ा बभिया वो 600 से 700 रुपया
3: प्रति क्विंटल।
2: पालक देखे 600 से 700 रुपया क्विंटल यो है। हरा चौराई देखे 1000 रुपए प्रति क्विंटल है। लाल चौराई 1200 है। फूल गोभी 1800 से 2000 के बीच में बा। पत्ता गोभी देखे 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल। सफेद आलू देखे 1000 है। लाल आलू भी 1100 रुपए प्रति क्विंटल।
3: अच्छा,
2: नींबू देखे 300 रुपए सैकड़ा। कटहल 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल। मशरूम भैया देखे अपन जितना 50 रुपए यानी कि 2000।
3: अच्छा, 200 ग्राम वाला 50 रुपए के मिला था। अच्छा, पैकेट। हाँ
2: बिल्कुल। और खरबूजा देखे 1800 से 2000 है क्विंटल। और तरबूज देखे 700 से 800 के बीच में है। और अपन जो शिमला मिर्च भैया ये है देखे 3000 रुपया प्रति क्विंटल। तो
3: दूधी मंडी के बाजार भाव है।
2: मंडी के बाजार भाव और जो कुशवाहा भैया दिलन है उनके भी देवल जाए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: लेकिन झूरे झूर नंद किशोर शर्मा उनकर संगतिया भैया के किसान गीत के साथ
2: चले।

0: नंद भैया,
1: नंद किशोर शर्मा उनका संगतिया भैया बिल्कुल जो इतना बढ़िया मन मनसायन करौलन
0: बिल्कुल
1: कि हम लोग तो झूमते रह गए। यही बीच में जौन बाकी की बार थाप रुक गई
0: एकदम, और देखा लगत रहला कि और सुनत जाये, मुख से गीत संगीत बड़ी बढ़िया लगला हो। और देखा जब भी पंचायती में जुटा गीत संगीत होला तो और थोड़ा सा मन खुश हो जाला हो,
1: इतना बढ़िया
0: जानकारी मन मनसायन सबके एक धाती होला, अपन कार्यक्रम में जुटने का एक मकसद होला। तो देखा जब आप सब मकसद पूर्ण हो चुकल बा, अब अपन देखे हम लोग कार्यक्रम के समापन की ओर आगे बढ़ल जात बा।
1: तो पहले धन्यवाद दे देवल जाए इनके कि इतना बढ़िया सुनौलन
0: बिल्कुल,
1: लेकिन साथ साथ जौन बा कि अपने स्वास्थ्य के जौन गाना भी निकलत हो ना गुनगुनाहट भी, तो जब स्वस्थ शरीर रहे तबे स्वस्थ मन के विकास हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, और स्वस्थ शरीर रहे के खातिर ना अपन हम लोगों के पौष्टिक आहार लेने के चाहिए। जैसे कि देखा है हम लोगों सुबह का जो हम लोगों का दिनचर्या होला, ये अपन देखा है जो चना है, मूंग है, मूंगफली है, ये सब के अगर भिगा के फुला के अगर हम लोगों खाते हैं तो हम लोगों के शरीर में जौन भी पौष्टिक कमी हुई ना वो पूर्ण होला।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण अभी देखा है जब सबको चश्मा लगले हो,
0: हाँ
1: एक कारण ये हो कि जौन बाकी विटामिन ए के अभाव हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अब गाजर कम उत्पादन करत बा लोग, उत्पादन करत भी बात रासायनिक खाद डाल करके उत्पादन करत बा, तो हमें कहाँ से पोषक तत्व रहे।
0: बिल्कुल,
1: तो विटामिन ए के सबसे बढ़िया स्रोत जौन बाकी गाजर है,
0: गाजर,
1: लेकिन एक जैविक खाद में प्रयोग करके अगर जौन बाकी आदमी उत्पादन करी तो एक खाइए तो कर असर करी। हरी साग सब्जी की स्थिति भी हो कीटनाशक मार ले डला जाता हो हमें, अब वो मैं यही से जोन बाकी वो नुकसान करता हूँ। तो हम लोग विटामिन युक्त आहार लें और स्वस्थ रहें। बात बात कही अभी बाकी है, अगले दिन बतियाल जाए फिर नया जानकारी के साथ। घड़ी के सुई इशारा करता हूँ कि हम लोग पंचायती समेटी
0: चले
1: चले के सब पंचन
0: के राम राम।

अभी हमारी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत आकाशवाणी के हम ओबरा केन से बोल रहे हैं। अगले क्रम में प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में हम आप सबको नंदकिशोर शर्मा और उनके साथियों के गाए चंद लोक गीत सुनवाएंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इनका गाया देवी गीत।

नंदकिशोर और उनके साथियों के गाए इस कहरवा के साथ ही हमारा कार्यक्रम लोकगीत समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम ओबरा केन से बोल रहे हैं।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:31 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। क्षमा कीजिएगा 7:20 पर। सात बजकर 31 मिनट पर आप सुनेंगे

आकाशवाणी की अनंत यात्रा क्रम के अंतर्गत आज की कड़ी में फिल्मी गीतों के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका। वाचन और संपादन आशीष वर्मा व रानी जासरी का होगा और प्रस्तुत करता होंगे सचिन कुमार वर्मा। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों के झरोखों से।

गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 पर। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार होंगे। फिल्म संगीत कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 9:30 पर। रसधारा कार्यक्रम सुनेंगे रात्रि 10 बजे और रात 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, ये थी हमारी कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो अब समाप्त हुई। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: बोल बोल के थक गए, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
2: तो वैसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
4: आरबीआई कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
6: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
7: बेटा
6: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
7: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
8: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
7: चलो
6: कहाँ?
7: एडमिशन कराने।
8: खाता हुआ एक्टिव।
0: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
9: ओ लवली, वेल डन,
10: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
9: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
11: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार।

0: विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
1: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृत
2: मंत्री परिषद की दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार के संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रूपए पर सहमति प्रदान की गयी। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
0: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
3: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है। वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग सौंपा गया है। 4 नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, PNG और LPG की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक PNG सुविधा पहुंचाना है।
4: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना LPG की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो LPG कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए।

0: उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी, एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: पिज़्ज़ा पार्टी, ये।
5: चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
8: यात्रियों मोबाइल चार्ज करना,
9: दिमाग चार्ज कर रखना।
10: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
9: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
10: अब क्या करोगे?
8: फ्री वाईफाई है ना?
9: बुद्धो सुधर जा।
10: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
10: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: जी कॉलेज का टाइम याद है?
12: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
11: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
12: कहाँ से पता चलेगा?
11: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करें, लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर

0: आपका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
0: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय।

0: आप कौन?
1: RBI कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: FM 102 दक्षिण सात पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी की आनंद यात्रा क्रम के अंतर्गत आज की कड़ी में आइए सुनते हैं फिल्म गीतों के कर प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका। वाचन एवं संपादन आशीष वर्मा व रानी राजश्री का है और प्रस्तुतकर्ता है सचिन कुमार वर्मा।
4: आकाशवाणी की अनंत यात्रा क्रम के अंतर्गत आज की कड़ी में सुनिए फिल्म संगीत के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका।

श्रोताओं, भारतीय जनमानस के सांस्कृतिक जीवन में आकाशवाणी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हमेशा से रहा है। रेडियो के माध्यम से देश के कोने कोने तक संगीत, समाचार, विचार और मनोरंजन पहुंचाने वाली यह संस्था केवल प्रसारण का माध्यम नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना को दिशा देने की शक्ति भी थी। विशेष रूप से फिल्म संगीत के विकास, प्रसार और लोकप्रियता में आकाशवाणी की भूमिका वर्षों से ऐतिहासिक रही है। भारत में फिल्म संगीत आज जिस व्यापकता और गहराई के साथ जनजीवन का हिस्सा बना हुआ है, उसमें आकाशवाणी का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता के पहले और बाद के दशकों में जब टेलीविजन का प्रसार नहीं हुआ था, ग्रामफोन या रिकॉर्ड प्लेयर हर व्यक्ति की पहुंच में नहीं थे, तब रेडियो ही वह माध्यम था जिसने फिल्मी गीतों को घर घर पहुंचाया। आकाशवाणी ने न केवल संगीत को लोकप्रिय बनाया, बल्कि संगीत की गुणवत्ता, भाषा, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को भी प्रभावित किया है।

श्रोताओं, भारत में रेडियो प्रसारण का आरंभ 1920 के दशक में हुआ था, लेकिन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के गठन के बाद इसे संगठित रूप मिला। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। उस समय भारतीय समाज में संचार के साधन बेहद सीमित थे और मनोरंजन के प्रमुख स्रोतों में नाटक, लोक संगीत और सिनेमा शामिल थे। फिल्म उद्योग तेजी से विकसित हो रहा था और फिल्मों के गीत लोगों को आकर्षित कर रहे थे, परंतु इन गीतों को व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाने के लिए किसी प्रभावी माध्यम की आवश्यकता थी। आकाशवाणी ने इस आवश्यकता को पूरा किया। रेडियो ने फिल्मी गीतों को शहरों से निकालकर गांव तक पहुंचाया और फिल्म संगीत को राष्ट्रीय पहचान दिलाई।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका को समझने के लिए उस समय की सामाजिक परिस्थिति को समझना भी आवश्यक है। भारत विविध भाषाओं और संस्कृतियों वाला देश है। ऐसे में कोई भी सांस्कृतिक माध्यम तभी सफल हो सकता था जब वह विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ सके। फिल्मी गीतों में भावनात्मकता, अपील, सरल भाषा और मधुर धुनों का समावेश होता था।

0: आकाशवाणी ने इन्हें अपने कार्यक्रमों में स्थान देकर जनता के साथ एक भावनात्मक संबंध स्थापित किया। धीरे धीरे फिल्म संगीत भारतीय समाज की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बनता चला गया।
1: हालांकि आकाशवाणी और फिल्म संगीत का संबंध प्रारंभिक दौर से इतना सहज नहीं था। स्वतंत्रता के बाद आकाशवाणी के तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री बी.वी. केशकर का मानना था कि फिल्मी गीतों में शास्त्रीय संगीत की शुद्धता नहीं होती और वे भारतीय संस्कृति के स्तर को गिराते हैं। इसी सोच के कारण साल 1950 के दशक में आकाशवाणी पर फिल्मी गीतों के प्रसारण पर कई प्रतिबंध लगाए गए। शास्त्रीय संगीत, भजन और लोक संगीत को अधिक महत्व दिया जाने लगा, लेकिन जनता की पसंद फिल्म संगीत थी। लोग रेडियो सिलोन जैसे विदेशी रेडियो चैनलों की ओर आकर्षित होने लगे।

और ऐसे में रेडियो सिलोन की लोकप्रियता ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता फिल्म संगीत से गहरा लगाव रखती है। इसी कारण आकाशवाणी को अपने कुछ नीतियों में परिवर्तन भी करना पड़ा। साल 1957 में विविध भारती सेवा शुरू हुई, जिसने फिल्म संगीत के इतिहास में नई क्रांति ला दी। विविध भारती ने फिल्मी गीतों, श्रोताओं की फरमाइशों और मनोरंजन पूर्ण कार्यक्रमों को प्रमुखता दी। यह सेवा इतनी लोकप्रिय हुई कि देखते ही देखते पूरे देश में इसकी पहुंच बन गई। बिना का गीतमाला जैसे कार्यक्रमों ने फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अमीन सयानी की मधुर आवाज और गीतों की प्रस्तुति शैली ने श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान बनाया। यह कार्यक्रम केवल गीतों का संग्रह नहीं था, बल्कि उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धड़कनों का प्रतीक भी बन गया था।

आकाशवाणी ने फिल्म संगीत को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ संगीतकारों, गायकों और गीतकारों को भी राष्ट्रीय पहचान दिलाई। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद, इन जैसे गायकों की आवाज रेडियो के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंची।

और इसी प्रकार नौशाद, सचिन देव बर्मन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों की धुनें घर घर में गूंजने लगी।

गीतकारों में शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी जैसे नाम जनता के बीच में बेहद लोकप्रिय हुए। आकाशवाणी ने इन कलाकारों को केवल मंच नहीं दिया बल्कि उन्हें भारतीय सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया।

फिल्म संगीत की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि आकाशवाणी ने इसे आम आदमी की भावनाओं से जोड़ दिया। प्रेम, विरह, देशभक्ति, सामाजिक संघर्ष और जीवन दर्शन जैसे विषयों पर आधारित गीत लोगों के जीवन का हिस्सा बनते चले गए। रेडियो पर प्रसारित गीत केवल मनोरंजन नहीं करते थे, बल्कि लोगों की भावनाओं को भी अभिव्यक्ति देते थे। खेतों में काम करने वाला किसान, कारखाने में काम करने वाला मजदूर, छात्र, गृहिणी और सैनिक, सभी वर्गों के लोग फिल्मी गीतों से जुड़ाव महसूस करते थे।

0: आकाशवाणी ने फिल्म संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत किया। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश में हिंदी फिल्म संगीत ने एक साझा सांस्कृतिक पहचान बनाने का कार्य किया।
1: फिल्म संगीत के व्यावसायिक विकास में भी आकाशवाणी का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। रेडियो पर गीतों के प्रसारण से फिल्मों का प्रचार होता था और दर्शकों में उत्सुकता बढ़ती थी। किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले उसके गीत रेडियो पर लोकप्रिय हो जाते थे, जिससे फिल्म की सफलता की संभावना बढ़ जाती थी। इस प्रकार रेडियो फिल्म उद्योग के लिए भी एक प्रभावी प्रचार का माध्यम बन गया था। संगीत कंपनियां और फिल्म निर्माताओं ने भी आकाशवाणी की शक्ति को समझा और आकाशवाणी के माध्यम से अपने गीतों के प्रचार पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया।

0: आकाशवाणी ने केवल लोकप्रिय गीतों को ही नहीं बल्कि संगीत की गुणवत्ता को भी महत्व दिया। प्रसारण के लिए गीतों का चयन करते समय भाषा की शालीनता, संगीत की मधुरता और सामाजिक मूल्यों का ध्यान रखा जाता था। इससे फिल्म संगीत में एक संतुलन बना रहा। कई गीतों में साहित्यिकता और काव्यात्मकता देखने को मिलती थी, जिसका एक कारण यह भी था कि रेडियो पर प्रसारण के लिए अच्छे स्तर के गीतों को प्राथमिकता दी जाती थी।
1: रेडियो कार्यक्रमों की प्रस्तुति शैली ने भी फिल्म संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फरमाइशी कार्यक्रमों ने श्रोताओं को सीधे प्रसारण से जोड़ दिया। लोग अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए पत्र भेजते और जब उनका नाम रेडियो पर प्रसारित होता तो उसे सुनकर श्रोता के दिल में एक विशेष प्रकार का आनंद आता था। इससे रेडियो और श्रोताओं के बीच आत्मीय संबंध स्थापित हुए।

आकाशवाणी ने फिल्म संगीत को समय के साथ बदलते समाज के अनुरूप ढालने में भी सहायता की। 1960 और 1970 के दशकों में रोमांटिक गीतों का दौर था।

टेलीविजन और बाद में इंटरनेट के आगमन के बाद रेडियो की लोकप्रियता में कुछ कमी अवश्य आई, लेकिन आकाशवाणी का महत्व समाप्त नहीं हुआ। आज भी एफएम चैनलों और रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से फिल्म संगीत लोगों तक पहुंच रहा है। पुराने गीतों के विशेष कार्यक्रम आज भी श्रोताओं को आकर्षित करते हैं। आकाशवाणी ने भारतीय फिल्म संगीत की जो परंपरा विकसित की, वह आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।

फिल्म संगीत और आकाशवाणी का संबंध केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, इसने सामाजिक परिवर्तन में भी अपनी भूमिका निभाई। कई फिल्मों के गीतों ने सामाजिक कुरीतियों, गरीबी, जातिवाद और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों को भी उठाया। जब ये गीत रेडियो पर प्रसारित होते थे तो उनका प्रभाव लाखों लोगों तक पहुंचता था।

आकाशवाणी ने नए कलाकारों को अवसर देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से निभाई है। कई गायक, कलाकार और संगीतकार रेडियो के माध्यम से पहचाने गए और बाद में फिल्म उद्योग में सफल हुए। रेडियो ने प्रतिभा को मंच प्रदान किया और संगीत की नई धाराओं को प्रोत्साहित किया।

0: भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में यदि फिल्म संगीत को जन जन का संगीत कहा जाए तो आकाशवाणी को उसका सबसे बड़ा वाहक माना जाएगा। इसने संगीत को वर्गों की सीमाओं से निकालकर जन जन तक पहुंचाया।
1: आकाशवाणी का दौर हमेशा से हर दशक के लिए खास रहा, लेकिन 1990 का दशक भारतीय फिल्म संगीत और आकाशवाणी दोनों के लिए परिवर्तन का समय था। इस दौर में देश आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ रहा था और संचार माध्यमों में तेजी से बदलाव आ रहे थे। टेलीविजन चैनलों का विस्तार होने लगा, कैसेट कंपनियां लगातार बढ़ती जा रही थीं और यह संस्कृति चरम पे पहुंच गई। बाद में निजी एफएम चैनलों का प्रभाव भी बढ़ने लगा। इन परिवर्तनों के बावजूद आकाशवाणी ने फिल्म संगीत के प्रसारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखी। 90 के दशक के फिल्मी गीतों ने युवाओं की भावनाओं, बदलती जीवन शैली और आधुनिकता की नई सोच को अभिव्यक्ति दी। कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम जैसे गायकों की आवाजें रेडियो के माध्यम से घर घर में लोकप्रिय हुई।

0: करती हूँ।
1: वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह भी है कि पुराने फिल्मी गीतों की लोकप्रियता फिर से बढ़ी है। आकाशवाणी और विविध भारती आज भी स्वर्णिम युग के गीतों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इससे नई पीढ़ी को पुराने संगीत की गुणवत्ता और भारतीय फिल्म संगीत की समृद्ध परंपरा से परिचित होने का अवसर मिलता है।
2: कह सकते हैं कि आकाशवाणी ने समय के साथ बदलते हुए भी अपनी सांस्कृतिक भूमिका को बनाए रखा। आकाशवाणी ने भारतीय फिल्म संगीत को केवल लोकप्रिय नहीं बनाया, बल्कि उसने राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान का स्वरूप भी दिया है, जो अब भी बरकरार है। आकाशवाणी ने संगीत को जन साधारण तक पहुँचा कर भारतीय समाज को भावनात्मक रूप से जोड़ने का कार्य किया है।

फिल्म संगीत के विकास, कलाकारों की लोकप्रियता और सामाजिक जागरूकता, साथ ही राष्ट्रीय एकता में आकाशवाणी का योगदान अमूल्य है, अमूल्य था और अमूल्य रहेगा। कह सकते हैं कि भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास आकाशवाणी के योगदान के बिना अधूरा माना जाएगा।

0: कार्यक्रम में वाचन और संपादन आशीष वर्मा और
1: रानी राजश्री का,
0: प्रस्तुत करता थे सचिन कुमार वर्मा।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की अनंत यात्रा क्रम के अंतर्गत आज की कड़ी में फिल्मी गीतों के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका। वाचन एवं संपादन आशीष वर्मा व रानी राष्ट्रीय गथा और प्रस्तुत करता थे सचिन कुमार वर्मा। अगले क्रम में प्रस्तुत श्रोताओं, गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत और सुगम संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति जगजीत सिंह की आवाज में।

अगले क्रम में प्रस्तुत है श्रोताओं फिल्म गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। और फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आप सबको सुनवा रहे हैं हम अरिजीत सिंह की आवाज में राधे श्याम फिल्म से।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फहीम अब्दुल्ला और इरशाद कामिल की आवाज़ में तेरे इश्क में फिल्म का गीत।

फहीम अब्दुल्ला और अरशाद कामिल के गायस गीत के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम ओबरा केन से बोल रहे हैं।

अगले क्रम में प्रस्तुत श्रोताओं, गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत और सुगम संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हंसराज हंस की आवाज में।

0: बाबूमान के गैस गीत के साथ ही हमारा सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरे केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के

0: साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
0: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने,
2: जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले पांच वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: Aaj hum Bharat-Norway sambandhon ko ek green strategic partnership ka swaroop de rahe hain. Is strategic partnership se clean energy se lekar climate resilience, blue economy, usse lekar ke green shipping. हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड, द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर शेयर्ड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी।
4: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: संदेश से पहले आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में हम सब उस्ताद हैं फिल्म का गीत। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी में आइए सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज में गीत गाता चल फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

जसपाल सिंह की गैस गीत के साथ ही हमारे यादों के झरोखों से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम ओब्रा केन से बोल रहे हैं।

अगले क्रम में श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। और फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबको सुनवा रहे हैं बॉबी फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ है शैलेंद्र सिंह की।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: संदेश की बात सुनो, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। कर्ज फिल्म से आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज है मोहम्मद रफी की।

अभी आपने सुना कर्मा फिल्म का गीत। किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आनंद बख्शी के लिखे गीत को संजीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आप सबको सुना रहे हैं जुर्म फिल्म से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

और अब श्रोताओं कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया गीत, जिसे हमने लिया है जानी दुश्मन भम से। वर्मा मलिक के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गायक गीत के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम ओबरा कैन से बोल रहे हैं।

अब आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस धारा। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, नया दौर फिल्म का। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गोपी फिल्म का गीत। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के थे और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नील कमल फिल्म से। शाहिर लुधियानवी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है रवि ने।

और अब श्रोताओं, रसधारा कार्यक्रम की आखिर में सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। अनजान के लिखे गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार के गैस गीत के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम ओबरा किन से बोल रहे हैं।

अब भाई सुनते हैं श्रोताओं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है तेरी मेहरबानी फिल्म से। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और आवाज़ें हैं शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में नगीना फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में राधा का संगम फिल्म का गीत। हसर जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था अनु मलिक ने। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत आई सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में प्यार झुकता नहीं फिल्म से। गीत की बोल SH बिहारी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गैज गीत के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50

0: प्रतिशत से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में दो विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी की ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:50 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।